91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

रहा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कल तुम सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी मैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्या।

धर्मशाला तो श्रोताओं तो हाँ सारे इस कार्यक्रम सुन दे माटी दी मैं तो सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे इन बनी गया सुन दे रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला गुंज अपने बंदी।

ट्रांसफर ये तुहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओ कने तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही। तुहां सारे ई बन

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
2: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
3: कहाँ रखेंगे टीवी?
4: अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी।
5: टीवी देखने बुलाएंगे?
6: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे।
7: बुलाओगे ना शुक्ला जी?
8: ए छोड़ो रुको, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
9: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
8: क्यों?
9: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके। अब वो देखो शुक्ला जी आ गए, देखो
10: शुक्ला जी।
11: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
12: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की,
13: वही असली तरक्की।
12: एक कदम स्वच्छता की ओर।
14: मुझे उड़ना है, मुझे पढ़ना।

0: अरे इसे क्या हुआ?
1: अरे सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालेंगे।
4: अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
5: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
4: एकदम।
6: सुबह उठते ही फोन देखने की आदत आपकी जिंदगी पर क्या असर डालती है? एक बात पूछूं, सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले फोन की तरफ क्यों जाता है? क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पूरे दिन के विचारों को प्रभावित कर सकती है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, उस समय मन को अच्छे विचार देने चाहिए। लेकिन अगर आँख खुलते ही तुम फोन में लग जाते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत मैसेज, नोटिफिकेशन और रील्स में चला जाता है। फिर धीरे धीरे मन को हर थोड़ी देर में फोन देखने की आदत हो जाती है। तुम कोई काम कर रहे होते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है। समय कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि फोन मत चलाओ। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को याद करो और सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है। उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
7: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान करूँ कि घर में सुख शांति आ जाए।
8: जुबान।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

नमस्कार, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। मैं हूं आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका। हाजिर हो गई हूं आज का मुख्य समाचार बुलेटिन लेकर। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। धर्मशाला में 24 से 31 दिसंबर तक कांगड़ा वैली कार्निवल आयोजित किया जाएगा। स्कूलों में सामाजिक संस्थाओं के कार्यक्रमों पर लग सकता है प्रतिबंध। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यक्रमों के अलावा अन्य आयोजनों पर रोक की तैयारी। एचपीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाई क्रिकेट विकास की यात्रा। नई दिल्ली में गूंजेगी हिमाचल की महिला किसानों की आवाज। सम्मेलन में प्रदेश से 250 महिलाएं होंगी शामिल। एचपी टेट 2026 के लिए बिना लेट फीस आवेदन की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर। शिक्षण संस्थानों के लिए तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र का 15 अक्टूबर तक नवीनीकरण जरूरी। धर्मशाला में 3 दिवसीय एफपीओ उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। कांगड़ा और चंबा के 28 प्रतिनिधियों ने सीखे व्यवसाय विस्तार के गुण। 3 वर्षीय व्यवसायिक लक्ष्य किए निर्धारित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध। अब समाचार विस्तार से।

धर्मशाला में इस वर्ष 24 से 31 दिसंबर तक कांगड़ा वैली कार्निवल आयोजित किया जाएगा। कार्निवल के आयोजन की तैयारियों को लेकर धर्मशाला में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज फैरवा ने की। बैठक में कार्निवल के दौरान प्रस्तावित विभिन्न गतिविधियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा आयोजन से संबंधित व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने बताया कि धर्मशाला में कांगड़ा वैली कार्निवल 24 से 31 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। उनका कहना है कि कार्निवल में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इस दौरान संबंधित विभागों को कार्निवल की तैयारियां अभी से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोजन के दौरान कानून व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और अन्य आवश्यक प्रबंधों को लेकर भी संबंधित समितियों को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। प्रदेश के स्कूलों में सामाजिक संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यक्रमों के अलावा अन्य कार्यक्रमों पर रोक लगाने की दिशा में व्यवस्था तैयार की जा रही है। बताया गया है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सामाजिक संस्थाओं के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। ऐसे कार्यक्रमों में विभिन्न संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों को अलग अलग विषयों की जानकारी दी जाती है। हालांकि अब स्कूलों में ऐसे कार्यक्रमों को लेकर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। स्कूलों में सामाजिक संस्थाओं के कार्यक्रमों पर रोक लगाने के साथ साथ स्कूलों में होने वाले कार्यक्रमों के लिए नई दिशा निर्देश व्यवस्था तैयार की जा रही है। 31 तरह के अतिरिक्त कार्य शिक्षकों को करने पड़ते हैं और ऐसे कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई है। शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विषयों को लेकर विभाग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। स्कूलों में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो और शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन व्यवस्थित तरीके से हो, इस दिशा में व्यवस्थाओं को लेकर काम किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट ने पिछले ढाई दशकों में केवल मैदानों तक ही नहीं बल्कि आधारभूत ढांचे के स्तर पर भी लंबी यात्रा तय की है। करीब 26 वर्ष पहले जहां हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यानी HPCA का वार्षिक वित्तीय बजट लगभग 20 लाख रुपए था, वहीं आज ये बढ़कर करीब 167 करोड़ रुपए के वार्षिक राजस्व तक लगभग पहुंच चुका है। HPCA जिला क्रिकेट संघ मंडी के अध्यक्ष अजय राणा जी ने बताया कि प्रदेश में क्रिकेट के विकास की यात्रा को संस्थागत रूप से तब का रुख मिला जब वर्ष 2000 में अनुराग ठाकुर ने HPCA की कमान संभाली। उस समय संस्था का वार्षिक वित्तीय आकार करीब 20 लाख रुपए था। समय के साथ संस्था ने क्रिकेट सुविधाओं, प्रशिक्षण व्यवस्था और खेल के आधारभूत ढांचे के विकास पर काम किया। आज हिमाचल की क्रिकेट यात्रा में धर्मशाला का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश की पहचान को मजबूत करने वाले प्रमुख स्थलों में शामिल है। वहीं मंडी का ऐतिहासिक पड्डल मैदान भी प्रदेश के क्रिकेट यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के अवसर पर नई दिल्ली में अखिल भारतीय महिला किसान कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश की 250 महिला किसान अपनी आवाज बुलंद करेंगी। भारतीय किसान संघ की ओर से आयोजित ये सम्मेलन 30 सितंबर को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में होगा। सम्मेलन में देश भर से करीब 60,000 महिला किसान कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया गया है। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों से महिला किसान सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली रवाना हुई हैं। भारतीय किसान संघ हिमाचल प्रदेश के प्रदेश महिला प्रमुख डिंपल ठाकुर और प्रदेश मंत्री डॉ. नीलम ठाकुर ने बताया कि सम्मेलन के माध्यम से महिला किसानों के कृषि क्षेत्र में भूमिका और उनकी पहचान को मजबूती से सामने रखा जाएगा। साथ ही जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों के लिए सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग भी उठाई जाएगी। सम्मेलन में कांगड़ा चंबा से 5-5 महिलाओं के शामिल होने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा कुल्लू, मंडी, सोलन, हमीरपुर, शिमला, बिलासपुर और सिरमौर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी महिलाएं सम्मेलन के लिए रवाना हुई हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी HPTET 2026 के लिए बिना लेट फीस ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा नवंबर 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। बोर्ड की ओर से पात्र अभ्यर्थियों से समय रहते आवेदन करने की अपील की गई है ताकि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक के कारण तकनीकी दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को अपने सभी विवरण सावधानी पूर्वक भरने और निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बाद ही प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा तक आवेदन नहीं कर पाता है तो 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच 600 रुपए लेट फीस के साथ आवेदन करने का अवसर भी दिया जाएगा। प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करवाना जरूरी होगा। विभाग की ओर से सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रमाण पत्र का नवीनीकरण 15 अक्टूबर तक सुनिश्चित किया जाए। जिन शिक्षण संस्थानों के प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो चुकी है या नवीनीकरण लंबित है उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। राजकीय उच्च विद्यालयों और निजी विद्यालयों को परिसर में तंबाकू मुक्त वातावरण बनाए रखने संबंधी निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। विभाग ने प्रत्येक विद्यालय को सालाना अपनी स्टेट्स रिपोर्ट का आकलन करने और उसके आधार पर प्रमाण पत्र प्राप्त करने अथवा नवीनीकरण करवाने की आवश्यकता बताई गई है। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीवी हारेगा, देश
1: जीतेगा। मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
2: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
3: कहाँ रखेंगे टीवी?
4: अपने वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी।
1: टीवी देखने बुलाएंगे?
4: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
1: ए छोड़ो, रुको, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
5: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
1: क्यों?
5: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके। शुक्ला जी
6: वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, असली तरक्की। एक कदम स्वच्छता की ओर।
8: मुझे उड़ना

0: अरे इसे क्या हुआ?
1: अरे सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालेंगे।
1: अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
1: एकदम।
5: सुबह उठते ही फोन देखने की आदत आपकी जिंदगी पर क्या असर डालती है? एक बात पूछूं, सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले फोन की तरफ क्यों जाता है? क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पूरे दिन के विचारों को प्रभावित कर सकती है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, उस समय मन को अच्छे विचार देने चाहिए। लेकिन अगर आँख खुलते ही तुम फोन में लग जाते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत मैसेज, नोटिफिकेशन और रील्स में चला जाता है। फिर धीरे धीरे मन को हर थोड़ी देर में फोन देखने की आदत हो जाती है। तुम कोई काम कर रहे होते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है। समय कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि फोन मत चलाओ। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को याद करो और सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है। उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
6: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान करूँ कि घर में सुख शांति आ जाए।
7: जुबान।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी हाजिर हो गई हूं। और श्रोताओ कार्यक्रम में ढेर सारी बातें होंगी, प्यारे प्यारे गीत आपको सुनवाएंगे और साथ ही साथ आपके साथ स्थानीय जानकारियां भी साझा करेंगे। तो श्रोताओ आज है 1 अक्टूबर, जी हाँ, साल के अंतिम महीने का वो जो तिमाही होता है वो लास्ट तिमाही जो है वो शुरू हो गया है और 9 महीने साल के जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं या हम कहेंगे कि पूरे हो चुके हैं। और अक्टूबर अपने साथ ढेर सारे त्यौहार, खुशियां और मनोरंजन के पल लेकर के आता है, वहीं सितंबर तक हमने जो साल बिताया है उसे हम यूं ही नहीं जाने देंगे। उन 9 महीनों में हमने जो कुछ भी किया है उसे ज़िंदगी का एक अनुभव समझ करके हम आगे बढ़ेंगे और जो कुछ भी कमियाँ गलतियाँ रह गई हैं उन्हें हम अक्टूबर महीने में अच्छे से तराशेंगे, बेहतर करने की कोशिश करेंगे और ये नहीं समझेंगे कि जो गलत हुआ वो ज़िंदगी भर के लिए गलत हो गया, उससे सबक लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ अगले आने वाले महीनों को हम और खूबसूरत और यादगार बनाएंगे। श्रोताओ आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आई है आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। अक्टूबर महीने की खुशी त्योहारों का माहौल बना रहेगा कार्यक्रम में, साथ ही साथ क्या कुछ खास है आज के कार्यक्रम में वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल लिए चलते हैं कार्यक्रम में सबसे पहले, कार्यक्रम के सबसे पहले गीत की ओर। राजा फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं श्रोताओ आपको उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। इंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक और बने रहिए हमारे साथ यूं ही रेडियो गुंजन धर्मशाला पर।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ कार्यक्रम में समय है अब आपको आज का विचार सुनाने का। आइए सुनते हैं क्या कहता है हमारा आज का विचार। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, वह केवल कठिन परिश्रम से मिलती है। जी हां श्रोताओं, आज का विचार फिर से दोहरा रहे हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, वह केवल कठिन मेहनत से मिलती है। हम सब जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो। सफलता हर किसी को चाहिए श्रोताओं, लेकिन कई बार हम प्रयास करते हैं, सफलता हाथ नहीं लगती और हम उस काम को वहीं छोड़ करके किसी और दिशा में चल पड़ते हैं। लेकिन जिस भी काम में हमें सफलता चाहिए, उस काम के लिए हमें कठिन परिश्रम करना होता है, तब जाकर के सफलता मिलती है। और कई बार किसी काम के लिए हमने बहुत मेहनत की होती है, सफलता नहीं मिलती और हमें लगता है कि ये जो हमारी मेहनत थी ये बेकार ही चली गई। लेकिन ऐसा नहीं होता। जिस काम के लिए आपने कभी भी प्रयास किया होता है, मेहनत की होती है, उसका परिणाम सफलता के रूप में आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी ना कभी ज़रूर मिलता है। और तब हमें याद आता है अपना वो समय जब हमने उस काम के लिए जी तोड़ मेहनत की होती है। श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ कार्यक्रम में आरंभ में ही मैंने कहा कि जी हाँ, कार्यक्रम के आरंभ में ये कहा कि अक्टूबर महीने का जो है वो भी आरंभ हो चुका है। आज अक्टूबर की पहली सुबह है, साल का एक और नया पन्ना हमारे सामने है। सितंबर पीछे छूट गया है, अपने साथ बहुत खूबसूरत यादें, कुछ अनुभव, शायद कुछ अधूरे सपने भी छोड़ कर गया है। लेकिन अक्टूबर हमें याद दिलाता है कि साल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमारे पास अभी भी करने को बहुत कुछ है, सीखने को और बदलने का समय है। तो क्यों ना इस अक्टूबर की शुरुआत एक छोटे से संकल्प के साथ करें कि जो बीत गया उसे बोझ बनाकर नहीं, अनुभव बनाकर साथ रखें और जो आने वाला है उसका स्वागत उम्मीद और सकारात्मक सोच के साथ करें। श्रोताओ अक्टूबर का महीना हमें ये भी सिखाता है कि बदलाव हमेशा बुरा नहीं होता। जैसे मौसम धीरे धीरे रंग बदलता है, वैसे ही जिंदगी में भी बदलाव हमें एक नए रूप में निखार सकता है। इस महीने खुद से, जी हाँ खुद से एक वादा कीजिए, दूसरों से आगे निकलने का नहीं, बल्कि कल के अपने स्वरूप से आज थोड़ा और बेहतर बनने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए अक्टूबर का स्वागत करें एक मुस्कान के साथ, एक नई उम्मीद के साथ।

श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय है आपको धर्मशाला और आसपास का तापमान बताने का। 17 डिग्री सेल्सियस तापमान है श्रोताओं इस समय धर्मशाला का, और वातावरण में नमी है 68%। जी हां श्रोताओं, पिछले 4-5 दिनों से तापमान जो है वो अटखेलियां कर रहा है। कभी एकदम 10-12 डिग्री टेम्परेचर और कभी 18 से 19 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। और यही वो समय है जब मौसम जो है वो बदलता है, यानी गर्मियों से बरसात और बरसात के बाद एकदम से सर्द ऋतु का आगमन। और सुबह शाम की जो ये हल्की सी ठंड होती है, इसमें हमें अपना ख्याल रखना है, अपने साथ अपने घर के छोटे बच्चे बुजुर्गों का भी खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्हें खास संभाल की, ख्याल की जरूरत होती है। तो श्रोताओं, बदलते मौसम के साथ अपना भी रखें ख्याल और हर मौसम का आनंद उठाएं, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, छोटी छोटी सावधानियां बरत के। 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और ये कार्यक्रम लेकर के हाजिर हुई हूँ मैं आज आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। 11 बजे तक रहूंगी श्रोताओं आपके साथ, आपसे करूंगी बातें, सुनाऊंगी प्यारे प्यारे से गीत। और अब कार्यक्रम में चलते हैं फलक तक। एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ 1 अक्टूबर की शुरुआत और आज क्या कुछ खास है वो भी आपको बताते हैं। श्रोताओ आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस जो है वो मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ एल्डर पर्सन। जी हाँ श्रोताओ 1 अक्टूबर को पूरी दुनिया में ये जो दिन है ये मनाया जाता है और इस दिन का मुख्य उद्देश्य है बुजुर्गों के सम्मान, उनके अधिकारों की रक्षा और उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1990 को प्रस्ताव पारित करके 1 अक्टूबर को इस दिन के रूप में नामित किया था और इसका पहली बार 1 अक्टूबर 1991 को इसका पहला आयोजन जो है वो किया गया था। इस दिन बुजुर्गों के अनुभव, ज्ञान और समाज में उनके योगदान को याद करने का ये दिन हमें अवसर देता है। श्रोताओं बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को अकेलेपन जैसी चुनौतियों के प्रति जागरूकता भी इस दिन बढ़ाई जाती है। क्या कुछ खास रहता है इस दिन के बारे में और क्या है मुख्य उद्देश्य इस दिन को मनाने के पीछे, इसके बारे में कार्यक्रम में हम विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। श्रोताओं फिलहाल कार्यक्रम में लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर। आप बने हुए हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, यूं ही बने रहिए, हमारी आपसे यही गुजारिश है श्रोताओं।

श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, आज हम बात कर रहे हैं जिस खास विषय पे, वो है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। क्यों आवश्यकता पड़ी श्रोताओ इस दिन की, इसके बारे में आइए बात करते हैं। इस दिन की घोषणा जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1990 को एक प्रस्ताव पारित करके हर साल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। और इसका पहला आयोजन 1 अक्टूबर 1991 को मनाया गया था। इससे पहले 1982 में विश्व वृद्धजन सभा द्वारा वृद्धजनों से जुड़ी वियना अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाया गया था, जिसने इस दिवस की नींव रखी थी। श्रोताओं, बढ़ती उम्र के साथ आने वाली चुनौतियां जैसे स्वास्थ्य समस्याएं, अकेलापन और उपेक्षा के बारे में समाज को जागरूक करना, अधिकारों की रक्षा, बुजुर्गों के मानवाधिकारों, उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार या भेदभाव, उम्रवाद या एजिंग को रोकना, श्रोताओं इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जो इस दिन को मनाने के उद्देश्य से जो है वो सम्मिलित हैं, उनके बारे में कार्यक्रम में हम आगे और भी बात करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में अब लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं कार्यक्रम में अब समय है आपको आज के दिन के इतिहास के बारे में बताने का। तो आइए चलते हैं, पलटते हैं इतिहास के पन्ने और जानते हैं क्या कुछ खास घटा था आज के दिन इतिहास में। श्रोताओं आज के दिन 1854 भारत में पहली बार डाक टिकट की शुरुआत हुई, जिस पर महारानी विक्टोरिया का चित्र था और मूल्य आधा आना था। आज ही के दिन 1949 चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन की शुरुआत हुई और माओ त्सेतुंग ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना चीन जनवादी गणराज्य की घोषणा की थी। 1 अक्टूबर 1953 भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाया गया था। और श्रोताओं आज ही के दिन यानी 1 अक्टूबर 1958 को अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की स्थापना की गई थी। एक अक्टूबर 1960 को नाइजीरिया देश को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी। आज ही के दिन 1 अक्टूबर 1978 भारत में विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाई गई थी। लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष आयु तय की गई थी। और श्रोताओं इसके साथ ही आज के दिन जिन प्रसिद्ध हस्तियों का जन्म हुआ था उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। आज ही के दिन 1919 मशहूर उर्दू शायर और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी का जन्म हुआ था। दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता शिवाजी गणेशन का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। एक अक्टूबर 1945 भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म हुआ था। श्रोताओं ये थी इतिहास की कुछ खास घटनाएं और आज के दिन पैदा हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी। आप इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। और श्रोताओं कार्यक्रम में अब लिए चलते हैं आपको इतिहास से वर्तमान की ओर, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं ये कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा 10 बजे। उससे पहले 9:50 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। यूं ही बने रहिए हमारे साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लंबित ऊर्जा परियोजनाओं में तेजी लाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 13 करोड़ से अधिक लोगों को। और कांगड़ा जिले में नशे के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी, अब तक नशा तस्करों की 46 लाख रुपए की राशि जब्त। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये कार्यक्रम स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री यूपीएससी शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में यूपीएससी और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक निर्णय नामक पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के ऊर्जा हितों को मजबूत करने और लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिमला में बहुउद्देशीय परियोजनाएं व ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने 66 मेगावाट की धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना को प्रदेश सरकार के अधीन लेने की प्रक्रिया तेज करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार प्रदेश हित में परियोजना की लागत की पहली किस्त का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने लूहरी और सुन्नी जल विद्युत परियोजनाओं को SJVNL से अपने अधीन लेने के प्रयास तेज करने और पूह समदो व समदो काजा के बीच 66 KV ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने रंगरिक की 2 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को 1 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित बर्फबारी शुरू होने से पहले चालू करने पर भी विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से शिमला जिला के रोहडू व रामपुर के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। दौरे की शुरुआत में मुख्यमंत्री आज रोहडू स्थित PM श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों से संवाद करेंगे और एंटी चिट्टा रैली में भाग लेंगे। इसके बाद वे चिड़गांव में विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सरकार गांवों के द्वार कार्यक्रम के तहत भटवारी में ग्रामीणों, महिला मंडलों तथा युवक मंडलों से सीधा संवाद करेंगे। 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री रामपुर के शिंगला में विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उनका काशा में सरकार गांवों के द्वार कार्यक्रम के तहत स्थानीय लोगों, महिला मंडलों और युवक मंडलों से संवाद करने का कार्यक्रम है। 3 अक्टूबर को नोगली और रामपुर में जनसभा व विद्यार्थियों से संवाद के कार्यक्रम प्रस्तावित है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 6 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल हैं। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 13 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला है, जिन पर 2 लाख करोड़ से अधिक का व्यय हुआ है। नड्डा ने बताया कि भारत में वर्ष 1990 से 2023 के बीच मातृ मृत्यु दर में 86% की गिरावट दर्ज की गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों व संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इससे पूर्व जयराम ठाकुर ने केंद्रीय पर्यावरण व वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात की। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की खंडपीठ ने संकेत दिया कि दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय की सीमा तय की जाएगी। शीर्ष न्यायालय ने धार्मिक भावनाओं और वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। कांगड़ा जिले में नशे के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिले में एनडीपीएस अधिनियम के तहत अब तक 5,46,00,000 रुपए की राशि वसूल की जा चुकी है। हमारे जिला संवाददाता ने बताया कि नशे के कारोबारियों की संपत्तियों पर कार्रवाई के अलावा युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
1: जिले में एनडीपीएस अधिनियम के तहत अब तक 5,46,00,000 रुपए की राशि वसूल की जा चुकी है। वहीं पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत 38 मामलों में प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजे गए हैं। नशे के कारोबार में संलिप्त 6 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई गई है। नूरपुर क्षेत्र में भी कार्रवाई का बड़ा असर सामने आया है। यहां 17 मामलों में करीब 29,96,00,000 रुपए की संपत्तियां जब्त की गई है। नशे के खिलाफ लड़ाई को केवल कार्रवाई तक सीमित न रखते हुए जागरूकता पर भी जोर दिया जा रहा है। शिक्षण संस्थानों में नशा निवारण क्लबों को सक्रिय किया जा रहा है, जबकि रेडियो के माध्यम से भी युवाओं और आम लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। नवरात्रों के दौरान प्रमुख मंदिरों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भी नशे के खिलाफ जागरूकता संदेश और स्लोगन प्रदर्शित किए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के 8 विभाग एक महीने के भीतर जोलसप्पड़ कैंपस शिफ्ट होंगे। पहले चरण में सर्जरी, ऑर्थो, नेत्र और ईएनटी विभाग स्थानांतरित किए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि शिफ्टिंग की तैयारियां अंतिम चरण में हैं।
2: 8 साल से क्षेत्रीय अस्पताल परिसर से संचालित हो रहा मेडिकल कॉलेज अब अपने नए कैंपस जोलसप्पड़ में शिफ्ट होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि शिफ्टिंग की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और एक माह के भीतर प्रथम चरण में 8 विभागों को नए परिसर में शिफ्ट किए जाने की उम्मीद है। प्रथम चरण में सर्जरी, ऑर्थो, नेत्र और ईएनटी विभाग जोलसप्पड़ शिफ्ट किए जाएंगे। रेडियोग्राफी और एनेस्थीसिया की सेवाएं हमीरपुर और जोलसप्पड़ दोनों स्थानों पर संचालित होंगी। वहीं नए अकादमिक ब्लॉक में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बायोलॉजी विभागों को शिफ्ट किया जाएगा। इससे नए परिसर में शैक्षणिक और चिकित्सा सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने का रास्ता साफ होगा। नए कैंपस में 3 टेस्ला MRI मशीन भी स्थापित हो चुकी है। अस्पताल संचालन से जुड़ी अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। अमर उजाला की सुर्खी है, अनुबंध प्रवक्ताओं से होगी अतिरिक्त भत्तों की रिकवरी। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों को जारी किए रिकवरी आदेश। पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, धौलासिद्ध प्रोजेक्ट सरकार के अधीन लेने के लिए कोर्ट में दाखिल होगा शपथ पत्र। दिव्य हिमाचल ने प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को शीर्षक दिया है, भानुपल्ली बिलासपुर बैरी ब्रॉडगेज रेल लाइन के लिए भू अधिग्रहण को जारी सभी अधिसूचनाएं रद्द। जबकि दैनिक भास्कर के शब्द हैं, बिना कारण अधिग्रहण की समय सीमा बढ़ाना गलत, हाईकोर्ट ने 4 अधिसूचनाएं की रद्द। दैनिक जागरण की एक खबर है, श्रम व रोजगार विभाग में कार्यरत 160 आउटसोर्स कर्मचारियों का काम पर न आने के निर्देश। हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, शिमला व धर्मशाला देश के 50 प्रतिष्ठित प्रगति शहरों में शामिल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लंबित ऊर्जा परियोजनाओं में तेजी लाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 13 करोड़ से अधिक लोगों को मिला स्वास्थ्य लाभ। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से किया इनकार, कोई संतुलित उपाय अपनाने का दिया सुझाव। और कांगड़ा जिले में नशे के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई जारी, अब तक नशा तस्करों की 5,86,00,000 रुपए की राशि जब्त। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ और सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं श्रोताओं एक बार फिर से कार्यक्रम में। प्रादेशिक समाचारों के बाद अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ।

जी हाँ श्रोताओं, ये धुन आपको सुनवा रहे हैं कुछ याद दिलाने के लिए। आप में से बहुत से श्रोताओं ने समझ लिया होगा कि अगला गीत कौन सी फिल्म का आपको सुनवाने जा रहे हैं। जी हाँ श्रोताओं, इस धुन को सुनकर के अगर आपके जहन में आया है कि किस फिल्म का गीत है, तो आपको बता दें मोहरा फिल्म का गीत कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाएंगे। और ये फिल्म 1994 में आई थी, एक्शन थ्रिलर फिल्म मोहरा, जिसका ये गीत तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, पाकिस्तान के मशहूर सूफी कव्वाल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां के लोकप्रिय कव्वाली दम मस्त कलंदर मस्त मस्त से ये गीत जो है ये प्रेरित है। संगीतकार विजू शाह ने नुसरत साहब की उस प्रसिद्ध धुन व लय को आधार बनाया, जिसे जनता के बीच मस्त मस्त अंदाज के कारण बहुत ही अधिक लोकप्रिय बना दिया गया। और उस समय हर भारतीय के, चाहे वो फंक्शन होते थे या कोई भी छोटा बड़ा कोई फंक्शन होता था, उसमें ये गीत ज़रूर बजता था। इसके शानदार और नशीले बोल दिग्गज गीतकार आनंद बख्शी ने लिखे थे, जिन्होंने इसकी पंक्तियों को बेहद ही सुंदर बनाया था। इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ दी थी। हालांकि अब वर्तमान समय में इस गीत का रीमेक भी बन चुका है, जिसमें नए उभरते कलाकारों की आवाज़ें हैं। लेकिन श्रोताओं, ये जो असली यानी ओरिजिनल वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग मोहरा फिल्म का ये गीत हम आपको इस कार्यक्रम में सुनवाएंगे, और इस गीत से जुड़ी कुछ और बातें भी हैं श्रोताओं, वो भी आपको बता दें। रवीना टंडन और अक्षय कुमार अभिनीत ये गीत, और इस गीत के आने के बाद रवीना टंडन का करियर भी ऊंचाइयों के पीक पर पहुंच गया। और अक्षय कुमार जो कई बार इस गीत से पहले कह चुके थे कि उनका करियर जो है वो लगभग ख़त्म होने की कगार पर है, खिलाड़ी फिल्म के बाद और मस्त मस्त गीत के बाद उनका करियर भी दुगनी रफ्तार के साथ चमक पड़ा था। तो आइए सुनते हैं इस मस्त मस्त गीत को रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

जी हाँ श्रोताओं, तो ये था मोहरा फिल्म का वो गीत जिसने 1994 से लेकर के अब तक धूम मचाई हुई है और हर किसी की जुबान पे उस समय भी ये गीत था और अब भी है। श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, अब बात करते हैं पोषण की। जी हाँ श्रोताओं, पोषण हम सभी के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। पोषण यानी पौष्टिक आहार। और इस समय सितंबर माह से लेकर अक्टूबर तक चल रहा है राष्ट्रीय पोषण माह और इसमें खासकर गर्भवती महिलाएं, उनके शिशु और जो हमारी किशोरियां हैं उनके पोषण का खास ख्याल रखने के लिए सरकार द्वारा ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ये मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। 9वां राष्ट्रीय पोषण माह इस समय 2026 में जो है वो मनाया जा रहा है और गर्भवती महिलाएँ उनके गर्भ के समय से लेकर के बच्चा जब 2 साल तक का हो जाता है, यानी कि शिशु जब स्तनपान शुरू करता है और उसके बाद जब उसका पहला खाना होता है, वो खाना किस समय दिया जाए, किस तरह का दिया जाए और किस तरह से उसमें पौष्टिक आहार जो है वो सम्मिलित किया जाए, ये सारा ज्ञान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जो है वो गर्भवती महिलाओं को और हमारी अन्य महिलाओं को भी दिया जाता है। क्योंकि जिनके भी घर में गर्भवती महिलाएं या छोटे बच्चे हैं उन सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बच्चों को अगर हम पौष्टिक आहार देंगे शुरुआती दिनों में तो उनका आगे का जीवन जो है वो बिल्कुल हेल्दी रहेगा, वो बच्चा जो है वो स्वस्थ रहेगा। और इन्हीं दिनों में अगर हम थोड़ी सी चूक कर देते हैं तो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है और आगे आने वाली ज़िंदगी भी उसकी जो है वो काफ़ी मुश्किलों भरी रहती है। इसलिए इन शुरुआती दिनों में हमें माँ का भी खास ख्याल रखना होता है। माँ जो खाएगी वही उस छोटे बच्चे को पहुँचेगा, इसलिए माँ के खान पान का भी ख्याल रखना है, उस शिशु का भी ख्याल रखना है जो गर्भ में है और गर्भ से आने के बाद जब वो जन्म लेता है उसके बाद का उसका जो पालन पोषण है यानी उसका पहला आहार है वो पौष्टिक हो और उसके 2 साल तक होने तक उसे माँ का दूध जो है वो भी बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ उसका जो पौष्टिक आहार है वो भी भरपूर पोषण से भरा हुआ होना चाहिए, तभी हमारे जो बच्चे हैं वो कुपोषण से बचेंगे, एकदम स्वस्थ और अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो श्रोताओं, आपके घर में या आसपास छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, किशोरियां हैं और भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में कहीं पे भी आपको सम्मिलित होने का मौका मिलता है तो ज़रूर इन कार्यक्रमों में भाग लीजिए, अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए और एक स्वस्थ भारत का निर्माण करने में मदद कीजिए। श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब चलते हैं श्रोताओं कार्यक्रम में आगे और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और आप रुख करते हैं जानकारियों की ओर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा व्यास नदी पर निर्मित की जा रही 66 मेगावाट क्षमता की धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना को प्रदेश सरकार के अधीन लेने के लिए बहुउद्देश्य परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग को न्यायालय में शपथ पत्र दायर करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री बहुउद्देश्य योजनाओं एवं ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश हित में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना की लागत की पहली किश्त का भुगतान करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के लोगों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी तथा प्रदेश की संपदा और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। श्रोताओ ये थी जानकारी। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ।

श्रोताओ फिर से रुख करते हैं जानकारियों की ओर। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा की अध्यक्षता में बैठक हुई और कार्यालय के बैठक कक्ष में कांगड़ा वैली कार्निवाल के आयोजन की तैयारियों को लेकर ये बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्निवाल के दौरान प्रस्तावित विभिन्न गतिविधियां, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा आयोजन से संबंधित व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने बताया कि धर्मशाला में कांगड़ा वैली कार्निवाल 24 से 31 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा, इससे पहले भी धर्मशाला में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तावित है जिनमें देश व प्रदेश के अति विशिष्ट व्यक्तियों का प्रवास रहेगा। ऐसे में उन्होंने सभी संबंधित विभागों को कार्निवाल की तैयारियां अभी से शुरू करने के निर्देश दिए ताकि आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। उन्होंने कार्निवाल के तहत प्रस्तावित विभिन्न गतिविधियों के सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन के लिए विभागवार समितियां गठित करने तथा प्रत्येक समिति को स्पष्ट दायित्व सौंपने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी समितियां अपने समन्वय के साथ कार्य करें और तैयारियों की नियमित समीक्षा की सुनिश्चित की जाए। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी धर्मशाला पुलिस ग्राउंड में आयोजित होने वाले कांगड़ा वैली कार्निवाल से संबंधित। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, कार्यक्रम में अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। सुनवा रहे हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: अभी तो ये चाबी छोड़ दो, ये घर कहीं नहीं भागा जा रहा बेबी।
1: श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, फिर से बात करते हैं हम इंटरनेशनल डे ऑफ एल्डर पर्संस की। जी हाँ श्रोताओं, वृद्ध जन वरिष्ठ जन के लिए खास दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है, और वृद्ध जनों के साथ होने वाले सामाजिक, कहें मानसिक या आर्थिक जो उनकी तकलीफ़ें होती हैं, उन सब से हमें रूबरू करवाना कि किस तरह से वो बढ़ती उम्र में अपने जीवन में अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं, वो इस तरह से महसूस ना करें, इसके लिए ही आज का ये दिन जो है ये मनाया जाता है, ताकि लोग वृद्ध जनों के साथ दुर्व्यवहार ना करें और उन्हें ऐसा महसूस ना करवाएं कि वो इस समाज का हिस्सा नहीं है। बढ़ती उम्र के साथ हमें उन्हें स्वीकार करना है, और उनके साथ होने वाली जो भी सामाजिक, शारीरिक और मानसिक समस्याएं हैं, हमें उन्हें भी समझना है। बढ़ती उम्र, जहां उम्र का बढ़ना लाजमी है श्रोताओं, वहीं उम्र के बढ़ने के साथ साथ लोगों का जो शरीर है वो अपनी शक्ति खोता जाता है, और जब वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं तो उन्हें लगता है कि वे परिवार के बाकी सदस्यों के ऊपर बोझ बन गए हैं, या कई बार परिवार के सदस्य ही उन्हें ऐसा एहसास दिलाते हैं कि आप परिवार के लिए ज़रूरी नहीं हैं, और आपका जो है इस परिवार में होना ना होना, या कई बार उन्हें ये भी एहसास दिलाया जाता है कि उनका ना होना ही परिवार के लिए उचित है। तो इस तरह का वो अपमान परिवार में रहते हुए ना सहें, ना सिर्फ परिवार में बल्कि समाज में भी कई बार उन्हें इस तरह के एहसास दिलाए जाते हैं, तो इस तरह के दिल को गहराई तक दुखाने वाले एहसास उन्हें ना दिए जाएं, उन्हें सम्मान दिया जाए, उनकी स्थिति को समझा जाए, इसके लिए ही श्रोताओं आज का जो ये दिन है विश्व भर में मनाया जाता है, ताकि हम लोगों में चेतना आए कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो भी इस समाज का, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब लीजिए सुनिए अजब प्रेम की गजब कहानी। जी हाँ श्रोताओं, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं आतिफ असलम की आवाज़। एंजॉय कीजिए ये प्यारा सा ट्रैक रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और दोस्तों, आज हम मना रहे हैं वरिष्ठ जन दिवस। जी हाँ, वो वरिष्ठ जन, वो हमारे परिवार के बड़े, जिन्हें हमारे परिवार की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। श्रोताओं, संस्कारों की बात भी बहुत मायने रखती है। जिन परिवारों में बच्चों को शुरू से सिखाया जाता है कि हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। और वहीं कुछ परिवारों में हमारे घर के बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि उन्हें परिवार का हिस्सा माना नहीं जाता, उन्हें धुतकारा जाता है। और छोटे बच्चे जब ये सब चीज़ें देखते हैं तो वो यही सीखते हैं। और वो बच्चे जब इस तरह के माहौल में ये देखेंगे, ये सीखेंगे, तो आगे जाकर के वो अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना तो दूर की बात है, उनके साथ अभद्र व्यवहार करेंगे। और इसी तरह के व्यवहार को रोकने के लिए इस तरह के दिन हमें मनाने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, उनको इस तरह के अपमान का सामना ना करना पड़े। तो श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि परिवार में आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ प्यार के साथ रहिए, और बच्चों को भी ये संस्कार दीजिए कि परिवार के बड़े बुजुर्गों के बिना हमारा परिवार जो है वो संभव नहीं है। और श्रोताओं, बातचीत यूं ही जारी रहेगी, फिलहाल लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम में, कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ आज 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एल्डर पर्संस। जी हाँ श्रोताओ, इस विषय के बारे में हम कार्यक्रम में आपके साथ बात कर रहे हैं जब भी हमें समय मिल रहा है। और ना सिर्फ हमारे परिवार के एल्डर पर्संस बल्कि हमारे समाज के जो भी आस पड़ोस के जो बड़ी उम्र के व्यक्ति हैं उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप उनकी किसी तरह से मदद कर सकते हैं, बढ़ती उम्र के साथ एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाती है श्रोताओ, वो होता है उस बढ़ती उम्र के व्यक्ति का अकेलापन, यानी उसका अकेला हो जाना। और जहाँ शारीरिक कमज़ोरी आती है मानसिक तनाव भी बढ़ता है। और जब वो व्यक्ति अकेला होता है, अकेलेपन में उसके साथ बातें सांझे करने के लिए कोई भी नहीं होता, तो वो और भी ज़्यादा टूटता है। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपके बिजी शेड्यूल्स में से आप 10-15 मिनट निकाल के उस बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ, ज़रूरी नहीं वो आपके परिवार का सदस्य हो, कई बार हमारे आस पड़ोस में भी बड़े बुजुर्ग होते हैं जो तन्हाई से अकेलेपन से परेशान होते हैं। और आपने भी कभी बात करके महसूस किया होगा कि हम जब उनसे बात करते हैं तो उनका चेहरा खिल जाता है और अपने जीवन के इतने प्यारे प्यारे और अच्छे अनुभव हमारे साथ साझा करते हैं। और उनके पास इतना खजाना, इतना भंडार होता है कि उन 10 मिनट में ही लगता है कि वो सारा का सारा खजाना हम पे उड़ेलना चाहते हैं। तो जब भी कभी वक्त मिले उनके साथ ज़रूर बात कीजिए, उनका दुख साझा कीजिए, उनके अकेलेपन को थोड़ा सा दूर करने में मदद कीजिए। यही है श्रोताओं आज के दिन का खास मकसद कि आप अपने परिवार के, अपने समाज के बड़े बुजुर्गों का दुख, उनका जो पीड़ा है उनको महसूस करें और उनके साथ कुछ समय साझा करें। आइए श्रोताओं कार्यक्रम में सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

जी हाँ श्रोताओं, अपने तो अपने होते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको यही संदेश देना चाहेंगे कि आज का जो ये दिन है, दो खास विषयों पर बात की कि आज अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है, सितंबर तक जो छूट गया उसे एक आप अनुभव की तरह लें और आगे ज़िंदगी में जो भी करेंगे उसे ठीक

अच्छे से करेंगे। और दूसरा, आज का खास दिवस हमारे वृद्धजनों के लिए, परिवार में, समाज में, कहीं पे भी आपको बड़ी उम्र के अगर व्यक्ति दिखते हैं तो उनसे नाक मुंह मत सुकोड़िए। उनकी आप अगर आप मदद कर सकते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो वो ज़रूर कीजिए। यही है हमारे आज के कार्यक्रम का संदेश श्रोताओं। और अब आपसे लेते हैं विदा इसी वादे के साथ कि बहुत जल्द आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक अनुमति दीजिए अपनी रेडियो दोस्त पिंकी को।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुखाने नए पुराने।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीवी हारेगा, देश
1: जीतेगा। मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
2: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
3: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी।
1: टीवी देखने बुलाएंगे?
3: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
1: ए छोड़ो, रुको, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
4: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
1: क्यों?
4: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके। शुक्ला जी
5: वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
6: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की,
7: वही असली तरक्की।
6: एक कदम स्वच्छता की ओर।
8: मुझे उड़ना

0: अरे इसे क्या हुआ?
1: अरे सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालेंगे।
1: अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
1: एकदम।
5: सुबह उठते ही फोन देखने की आदत आपकी जिंदगी पर क्या असर डालती है? एक बात पूछूं, सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले फोन की तरफ क्यों जाता है? क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पूरे दिन के विचारों को प्रभावित कर सकती है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, उस समय मन को अच्छे विचार देने चाहिए। लेकिन अगर आँख खुलते ही तुम फोन में लग जाते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत मैसेज, नोटिफिकेशन और रील्स में चला जाता है। फिर धीरे धीरे मन को हर थोड़ी देर में फोन देखने की आदत हो जाती है। तुम कोई काम कर रहे होते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है। समय कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि फोन मत चलाओ। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को याद करो और सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है। उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
6: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान करूँ कि घर में सुख शांति आ जाए।
7: जुबान।

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 MHz पर।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर से एक और प्रेरणा से भरी हुई कहानी लेकर आए हैं और वो हमें बहुत ही खास मेहमान से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए डॉक्टर शर्मा से बात करते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और मैं आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार है, मैं स्वागत करता हूँ। मैं ऑर्गन इंडिया की तरफ से भी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो हमारे साथ मेहमान हैं, जिनसे मैं आज आपको मिलवाना चाहता हूँ, बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी हैं, बहुत ही मोटिवेटेड, अपने आप में एक मोटिवेशन है और दूसरे लोगों को भी ये बहुत अच्छे से प्रेरित करते हैं अलग अलग कॉजेस के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। सो दोस्तों, आज जो हमारे साथ मेहमान है, मैं आपको ज़्यादा देर ना करते हुए उनका नाम बताता हूँ। इनका नाम है प्रीति मस्के। ये पुणे की रहने वाली हैं और मिडिल एज में आके अपनी फैमिली और अपने जो जॉब है उन सब से हटके इन्होंने कुछ अलग करने का सोचा कि इन चीज़ों को तो मैं करूँगी ही, सभी लोग करते हैं, लेकिन मैं समाज के लिए क्या कर सकती हूँ। तो इन्होंने इस सोच को लेके साइकिलिंग स्टार्ट करी ताकि फिटनेस को बढ़ावा दे सके। तो साइकिलिंग करने के साथ साथ ही इन्होंने बहुत सारे कॉजेज भी चुने। अपनी हर एक साइकिल की ट्रिप पर वो एक कॉज को प्रमोट करती हैं और लास्ट टाइम इन्होंने जब वो साइकिल की जो राइड वेस्ट टू ईस्ट जो की थी, मतलब भारत के पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक जो अपनी साइकिल राइड की थी, उसमें उन्होंने अंगदान को प्रमोट किया था, अंगदान के ऊपर जागरूकता फैलाने की कोशिश की थी। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए उनसे बात करते हैं। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद, थैंक यू।
2: प्रीति जी, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया हमारे श्रोताओं को कि आपने साइकिल राइड चुनी लोगों को फिटनेस के लिए अवेयर करने के लिए, और उसके साथ ही आपने अलग अलग कॉजेज भी चुने जिससे उनके ऊपर जागरूकता फैलाई जा सके। तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि आप क्या करती हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है एंड कैसे इन सब में आप आई।
3: मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ, दो बच्चों की माँ हूँ, जो अपना डे टू डे रूटीन करती थी और फैमिली देखती थी, हस्बैंड को उसके काम में मदद करती थी। लेकिन ये करते करते ना मैं बहुत बोर हो गई थी, ऐसा लग रहा था मेरी लाइफ यहीं पे ख़त्म हो रही है। इतनी निराशा आ चुकी थी ना कि क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। तब भी मुझे ये मिला रनिंग और साइकिलिंग जो इंट्रोड्यूस हुआ, जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी और जिसमें एक के बाद एक मुझे मौके मिलते गए और जो बेहतरीन कर सकती हूँ वो उसमें मैं कोशिश करते गई और आज 3-4 गिनीस रिकॉर्ड करते हुए अलग अलग टाइप के मैसेजेस स्प्रेड करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं और अभी नया कुछ करने का ठान के इनसे मिलने आए हैं।
2: तो प्रीति जी, आप साइकिलिंग एंड रनिंग में करते क्या हैं? आप कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं या किसी स्टेट या किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, या फ्रीलांसर आप अपना लक्ष्य को चुनते हैं, और किस तरह से आप ये चीज़ें करते हैं?
3: ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ, दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशन जी, ये मेरा शौक है, पैशन है जी। कि साइकिलिंग करते हो, जैसे कश्मीर टू कन्याकुमारी हुआ, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हुआ, मनाली टू लेह साइकिलिंग या रनिंग या वेस्ट टू ईस्ट साइकिलिंग, ये सारे ये रूट है जो गिनीस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आते हैं। तो चांस मिला है तो वो रिकॉर्ड्स करते करते क्या कर सकती हूँ सबके लिए, मतलब मुझे जो सोसाइटी से मिल रहा है वो कैसे बैक दे सकती हूँ मैं, ये सोचते हुए एक कॉज लेके चलती हूँ और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे, यही मेरा रहता है।
2: आपने जैसे गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बात की, तो आपने अपने नाम पर कोई रिकॉर्ड दर्ज किया?
3: ये सारे रिकॉर्ड प्रीति मस्के के नाम पे है।
2: कौन से सारे?
3: मनाली टू लेह साइकिलिंग है, मनाली टू लेह
2: साइकिलिंग कितने कुछ घंटे की अंदर की?
3: लेह मनाली साइकिलिंग है वो 55 घंटे में हुआ था जो गिनीस रिकॉर्ड बन चुका, जो मुझे गिनीस ने 60 घंटे दिए थे। देन वही रूट हमने इमीडिएट एक महीने बाद किया रनिंग से, तो वो हुआ था गिनीस ने दिए थे 6.5 दिन, जो हमने 4 दिन 22 घंटे और 9 मिनट में किया था।
2: तो कितने किलोमीटर था ये रूट?
3: ये है 430 किलोमीटर,
2: 430 किलोमीटर,
3: और वो भी अल्टीट्यूड पे।
2: और इसमें रुक सकते हैं या कंटिन्यूसली रनिंग होती है?
3: नहीं, रुक सकते हैं, अपने हिसाब से आप सब कुछ कर सकते हो, ले उनके सारे रूल्स फॉलो करके
2: उस टाइम लिमिट के अंदर आपको पूरी करनी है।
3: हाँ, पूरी करनी। हाँ,
2: ओके। तो आपने उनकी टाइम लिमिट से पहले ही रिकॉर्ड कर दिया और अपने नाम कर लिया। जी, ओके। सो इस तरह की कितनी जो रिकॉर्ड्स हैं, कितनी राइड्स आप कर चुके हैं रनिंग या साइकिलिंग में?
3: ऐसे कर चुके तो बहुत 5-6 है, लेकिन गिनीस होके आए हैं ऐसे 3 है,
2: 3
3: चौथा आएगा, और देखते हैं लोगों की ऐसे
2: 4 गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गए हैं, और वैसे आपने 5 या 6 किए।
3: हाँ,
2: जी। सो जैसा मैंने श्रोताओं आपको बताया था कि इन्होंने अंगदान के ऊपर भी जागरूकता अपनी लास्ट रूट में फैलाई थी, तो थोड़ा सा उसके बारे में प्रीति जी बताइए कि अंगदान क्यों, मतलब सडनली अंगदान के बारे में कहाँ से आपको जानकारी मिली और कैसे आपने डिसाइड किया कि मैं साइकिलिंग के थ्रू अंगदान के ऊपर भी जागरूकता बढ़ा सकती हूँ लोगों में?
3: रिकॉर्ड तो मेरे लिए थे, लेकिन उसमें मैं खुद के रिकॉर्ड बनाते बनाते ऐसा क्या कर सकती हूँ जो मुझे सोसाइटी से मिल रहा है मैं वापस दूँ। तो वो सोचते सोचते मुझे ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस रीबर्थ फाउंडेशन वाले मिले, उन्होंने उनसे बात हुई तो पता चला कि मैं मेरे रिकॉर्ड के साथ ऐसा कुछ मैसेज लेके जा सकती हूँ। फिर हमारी बातचीत हुई और मैं कॉज से जुड़ गई। और ऑर्गन डोनेशन इसलिए है क्योंकि ऑन रूट ही, मतलब रास्ते पर ही बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वहीं पे हमको लोगों को समझाना ज़रूरी है ऑर्गन डोनेशन के बारे में। तो मुझे लगा था दिस इज़ द बेस्ट कि जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वहीं से वो कॉज लेके चलते हैं।
2: बिल्कुल। श्रोताओं, मैं आपको बताऊँ कि हमने अभी इससे पहले जितने लोगों से बात करी है या जितने लोगों के साथ हमने शोज किए, सब में एक कॉमन फैक्टर था कि वो किसी ना किसी तरह से ट्रांसप्लांट और अंगदान से जुड़े हुए थे, या तो उनके परिवार में किसी को ज़रूरत थी, या फिर उन्होंने अपने परिवार में किसी के अंगदान किए थे, या फिर वो डॉक्टर थे या ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर थे, तो वो किसी ना किसी तरह से अंगदान से जुड़े हुए थे, तभी उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। लेकिन प्रीति जी पहली वो शख्स हैं जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि इनका बैकग्राउंड अंगदान या अंग प्रत्यारोपण ऑर्गन ट्रांसप्लांट से रिलेटेड नहीं है। इन्होंने खुद से इन चीज़ों से लिंक ना होते हुए इस टॉपिक को चुना, तो प्रीति जी इसका तो हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने लेवल पर इस चीज़ को चुना और इस चीज़ को आगे बढ़ाया। अगर हम नंबर्स में बात करें तो करीब कितने लोगों को आप अंगदान के बारे में जागरूक कर पाई हैं अभी तक?
3: जैसे मुझे बताया गया, हमने वेस्ट टू ईस्ट अभी किया था अंगदान का मैसेज लेते हुए, तो हम लोग बाय काउंट मुझे पता था कि 8.5 करोड़ लोगों तक पहुँचे, लेकिन यहाँ आने से पहले उन्हीं लोगों ने मुझे बताया कि हम लोग 17 करोड़ लोगों तक पहुँचे, जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं था कि ये क्या होता है। वहाँ पे लोगों को ये जागरूकता अलग अलग माध्यम से पहुँचाई, और मैं चाहती हूँ कि ये कार्य मैं और बड़ी लेवल तक आगे तक लेके जाऊँ।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रीति जी, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे। दोस्तों, हम थोड़ी देर में वापस आते हैं और अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
0: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव।
4: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आंखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आंखों से वो दुनिया को देख सकता है। हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं, और किसी और को जिंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने जिंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा जिंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज हम आप सब समझ जाएं, तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी जिंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का। इस जिंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा, एक व्यक्ति 8 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जानें कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है, उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही फ्लैश करिए और हमारा साथ दीजिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे प्रीति मस्के जी से, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और 4 बार हैं। सो हम बात कर रहे थे उनकी जर्नीज के बारे में कि कैसे उन्होंने अंगदान के मैसेज को अपनी जर्नी के थ्रू फैलाया। सो उन्होंने ब्रेक में जाने से पहले, प्रीति जी आपने बताया कि 17 करोड़ लोगों को आपने इसके बारे में जानकारी दी है, तो वेस्ट टू ईस्ट रूट आपने कहा, तो अगर हम सिटी की बात करें तो किस सिटी से किस सिटी तक और इसमें कितनी टोटल सिटीज आपने कवर करी?
2: सिटीज़ तो काफ़ी कवर की। ये शुरू हुआ था वेस्ट मीन्स पाकिस्तान बॉर्डर कोटेश्वर गुजरात का, और ये ख़त्म हुआ किबिथु अरुणाचल प्रदेश जो जिसको हम चाइना बॉर्डर बोलते हैं
1: जी।
2: ये था 3955 किलोमीटर का जो हमने तय किया सारी मुश्किलों के बावजूद 13 दिन 18 घंटे और 38 मिनट में, और ये गिनीज रिकॉर्ड बना।
1: 13 दिन 18 घंटे 38 मिनट
2: हाँ, ये 8 स्टेट में से गुजरे थे हम
1: जी।
2: सबसे चैलेंजिंग तो उसमें था आसाम और अरुणाचल, जो अपने एरिया में किसी को भी सुन के भी लगता है आसाम और अरुणाचल कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत सारी बातें उसके बारे में सुनते हैं।
1: 13 घंटे में तो शायद इंडियन रेलवे भी नहीं पहुंचती दिल्ली से उनका भी टाइम, मतलब जबकि वो कंटिन्यू रन करती हैं, तो आप भी कंटिन्यू रन करती थी या कंटिन्यू साइकिलिंग करती थी या फिर बीच में ब्रेक लेती थी? और अगर ब्रेक लेती भी थी, ऑब्वियसली लेना ही पड़ेगा, तो मैक्सिमम कितने घंटे तक आप ब्रेक लेते हो और उसके बाद कंटिन्यू करते हो अपनी जर्नी?
2: ये जो अभी वाला सफर रहा वो मिनिमम 17-18 घंटे साइकिल चली, और मैक्सिमम मेरा क्रू बताता है कि 24 घंटे भी चली, मतलब वो बोलते हैं 27 घंटे नॉनस्टॉप चली थी जिसमें खाने का ब्रेक ऑब्वियस था, बट बिना सोए वाला 27 घंटे भी एक बार चली थी, लेकिन बोलते 27 घंटे नहीं है तो 24 घंटे हम चले थे,
1: मतलब हम ये मान लें 24 घंटे कंटिन्यूसली विदाउट ब्रेक आपने कंटिन्यूस साइकिलिंग करी। तो जैसे मैं भी क्यूरियस हो गया हूँ इस चीज़ के बारे में, मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ कि कई बार सिक्योरिटी का इशू होता है, तो अननोन स्टेट्स रहते हैं, अननोन जगह रहती हैं, तो इस तरह की कोई चीज़ आपने सामना किया सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू, या क्योंकि बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं
2: सुनते,
1: और आपने बताया कि आप नाइट में भी साइकिलिंग करते हो अगर आप थके नहीं होते तो दिन में, रात में आपके लिए दिन रात कुछ नहीं है
2: हाँ।
1: तो जी सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू हुआ आपको, कहीं डर लगा आपको किसी एरिया से गुजरने में, कोई बहुत सारी कहानियाँ रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं बहुत सारे एरियाज रहते हैं जो बदनाम रहते हैं, यहाँ पर लूटपाट होती है, यहाँ पर परेशान किया जाता है,
2: ऐसे हर एक रिकॉर्ड में कोई ना कोई एरिया आता है जहाँ पे लोग बताते हैं, लेकिन थैंकफुली मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस तो नहीं आया है, क्योंकि रिकॉर्ड से सपोर्टेड है तो ऑफिशियल्स और क्रू चलते हैं
1: जी,
2: जो ये रिकॉर्ड्स ऑब्जर्व करके उसको नोट डाउन करते रहते हैं, तो दैट्स वाई ये भी हो सकता है तभी मैं दिन रात परफॉर्म कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, हर जगह पे क्रू भी बोलते हैं कि आज हम यहाँ पे रुकने वाले हैं, ये एरिया बिल्कुल अच्छा नहीं है
1: जी।
2: ऐसा बिहार में हुआ था, आसाम में भी बहुत सारे क्षेत्र है वहाँ पे सुना था, लेकिन ऐसा मुझे एक्सपीरियंस तो कभी नहीं आया, लेकिन लोगों का तो रहता है कि ये वाला एरिया है ना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे आतंकवादी होते हैं, लूटमार वाले होते हैं, जानवर होते हैं, जंगल होते हैं, ऐसे बहुत सारा सुनने में आता है।
1: और आप जिन जिन शहरों से गुजरते हैं तो वहाँ पर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपकी हेल्प करता है इस चीज़ में?
2: हाँ, जो भी है सारे लोग हेल्प करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स में ये होता है कि आप कंटिन्यू चलोगे तो लोग तो चाहते हैं आपसे मिलना या एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन आप रुक नहीं सकते हो
1: जी।
2: बहुत बुरा लगता है जब लोग बोलते हैं कि हम आपके लिए वेट करते रहे या आप गए और हम आ चुके थे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके लिए तब एक ही टारगेट होता है, लेकिन सारा होता है। मेनली मेरे लिए था मनाली लेह साइकिलिंग और रनिंग, ये आता है एरिया अपने आर्मी के अंडर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने काफ़ी हद तक वहाँ पर सपोर्ट किया था, इसलिए ये दोनों सबसे मुश्किल वाले अल्टीट्यूड वाले एक्सपीडिशन सबसे आसानी से हम कर गए, पता भी नहीं चला था। सो होता है हर जगह पे आपके सपोर्ट के लिए कोई ना कोई,
1: जब आपके लिए सपोर्ट के लिए आर्मी खड़ी हो तो फिर किस चीज का डर?
2: सोचा नहीं था, इट वाज सरप्राइजिंगली मिल गया, बट आई एम फॉर्चुनेट कि ये मौका मिला।
1: बिल्कुल। सो अगर हम अंगदान के बारे में वापस आए तो आपने इसके बारे में क्या फील किया, इस अंगदान के बारे में कि आपने इतने लोगों को अवेयर किया, इतने लोगों से बातें करी होंगी, आपने मिले होंगे, सबके एक्सपीरियंस जाने होंगे, जो एक्सपर्ट हैं आपने उनसे भी बातें की होंगी। तो अगर आपका व्यू देखें ओवरऑल अंगदान के ऊपर, जागरूकता के ऊपर, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
2: मेनली मैं जितना समझ रही हूँ ना, उतना पता चल रहा है कि अपने पास इतना सब कुछ है लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है, इसीलिए बाकी लोग जिनको ज़रूरत है वो इस चीज़ से वंचित है
1: जी।
2: तो ये अंगदान का पहले तो लोगों को पता चले, फिर उसके बारे में अवेयर हो तो लोग इन्वॉल्व होना शुरू होंगे
1: जी।
2: सो पहले इसी के ऊपर काम करते हैं कि अवेयरनेस, ये जब तक लोगों में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। और जब ज़रूरत है तभी हम उठे, मतलब मेरे रिलेटिव्स को, मुझे या मेरे दोस्तों को ज़रूरत है तभी हम इसके बारे में क्यों बोले, अभी से हम इसके बारे में बात करें, उसके ऊपर काम करें जब बाकी लोगों को ज़रूरत है और हम कुछ कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
2: तो ये हर एक जन सोचेगा ना तो हम बहुत लंबा जा सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल प्रीति जी, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। इसलिए मैंने आपका एग्जाम्पल इस पॉइंट पर दिया कि आप एक लौती ऐसी हैं पर्सन हैं जिनसे मैं मिला हूँ, जिनसे इसके आगे पीछे का कोई रिलेशन नहीं दिखता, फिर भी आप इस चीज़ से जुड़ी हुई हैं। सो प्रीति जी, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक में आके हम अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे। श्रोताओं, आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी 2 मिनट के ब्रेक में आते हैं।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ गए हैं अपने इस शो में। हम बात कर रहे हैं प्रीति मस्के जी से, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और अपनी अगली जर्नी के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सो प्रीति जी, हम बात कर रहे थे अवेयरनेस के ऊपर, तो आपने बताया कि लोगों को इससे अंगदान से तब नहीं जुड़ना चाहिए कि जब उनके घर में किसी को ज़रूरत हो या कोई पेशेंट है जिसके उन्होंने अंगदान किए हों। इन सब कारणों के बिना भी खुद से बात करनी चाहिए इनके ऊपर। तो अगर आपका एग्जांपल दिया जाए कि आपने ऐसा ही किया, तो कभी आप ऐसे लोगों से मिली हैं जिनका इससे लिंक ना हो फिर भी वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं?
2: मैंने इसी चीज़ से इम्प्रेस होकर यह करना शुरू किया। मैंने जिनका जिक्र किया था लास्ट वाले रिकॉर्ड में, जिनके साथ काम किया था रिबर्थ फाउंडेशन, उसमें से एक भी मेंबर ना कभी उन्होंने किसी को ज़रूरत थी उनके फैमिली मेंबर में या उनको इसीलिए शुरू किया, बल्कि वो लोग ऐसा कुछ करना चाहते थे समाज के लिए, इसलिए उन्होंने शुरू किया था। तभी मुझे लगा था कि अगर ये ज़रूरतमंद नहीं है या ना डोनर है ना रिसिपियंट है, फिर भी काम कर रहे हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से ये दुनिया चल रही है, हम ऐसा बोल सकते हैं, तो उन्हीं के कारण है। तो यही लोग सोचने पे मजबूर करते हैं कि हाँ, हम एक कदम उठाते हैं लोगों को मदद करने के लिए।
1: अगर हम फ्यूचर की बात करें, तो अब फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं इसको अंगदान को लेके?
2: अगले महीने मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिलिंग कर रही हूँ।
1: कश्मीर टू कन्याकुमारी? हाँ। वर्टिकल में पूरी इंडिया को?
2: हाँ, जो पहले कर चुकी हूँ, अभी कम से कम टाइम में रिकॉर्ड के लिए कर
1: एक बार आप कर चुकी हैं?
2: कर चुकी हूँ।
1: वो कितना क्या टाइमिंग थी उसकी जिसमें आपने फिनिश किया था?
2: ये नॉन सपोर्टेड था इंडिया बुक रिकॉर्ड के लिए। 2019 में सबसे पहला एक्सपीडिशन था और वो मैंने 17 दिन 17 घंटे में हमने किया था ग्रुप से, और अभी जितना मिनिमम हो सके
1: खुद के रिकॉर्ड को तोड़ने की पूरी तैयारी में।
2: हाँ, ऐसा बोल सकते हो।
1: और इसमें कौन से कॉज को आप सपोर्ट करने की
2: ऑब्वियस
1: कोशिश कर रहे हैं?
2: ऑर्गन डोनेशन ही है अभी तो, ये मेरी लाइफ से जुड़ चुका है। मैं जहाँ भी जब भी जाऊंगी, मतलब जो कुछ भी करूंगी।
1: ऑर्गन डोनेशन से पहले कॉजेस चेंज होते थे, लेकिन जब ऑर्गन डोनेशन आया तो उसके बाद अब वही मेन चीज है,
2: क्योंकि यहाँ पे इसमें करने जैसा बहुत कुछ है।
1: बिल्कुल, ये एक तरह से हर चीज का अपने अंदर कवर कर लेता है। अगर आप बात करें कि अदर हेल्थ फैक्टर्स की, कि चलो अंगदान की नौबत ही ना आए, तो अगर हम फिटनेस को प्रमोट करेंगे तो अंगदान की नौबत ही नहीं आएगी। तो एक तरह से आप वो भी सपोर्ट कर रहे हो। अगर अंगदान की

0: नौबत आ गई है, तो आप निदान लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें उसके लिए जागरूकता पर काम कर रहे हो, और जिन लोगों ने अंगदान करवा लिया है उनके लिए भी एक तरह से आप परफेक्ट एग्जाम्पल हो कि एक पर्सन जिसका कोई लेना देना नहीं है इनसे, वो इतना कर सकता है जब इस कॉज को प्रमोट करने के लिए। तो जिन लोगों को ऑलरेडी अंग मिले हुए हैं, जो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं, एक नई ज़िंदगी उन्हें मिली है, तो वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। एक तरह से तीनों चीज़ें हमने कवर कर ली हैं जी। ओके, तो प्रीति जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे श्रोताओं को अगर आप कोई संदेश देना चाहती हों फिटनेस पर, अंगदान के ऊपर, या अंगदान से जुड़े हुए जो भ्रांतियाँ हैं आपने समाज में सुनी होंगी, तो उनके ऊपर तो आप क्या कहना चाहेंगे?
1: एक तो है, पहले खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, थोड़ा सा फिटनेस के ऊपर ध्यान दो, ज़्यादा नहीं, आधा पौना घंटा बहुत काफ़ी है, जिससे सच में नौबत ही नहीं आएगी कि हमको रिसिपिएंट होने की।
0: अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं प्रीति जी, जब आपने ये बात कही पहली कि पहले खुद के लिए थोड़ा सा टाइम लगा लो, निकालो, तो मैं भी डॉक्टर हूँ और मैंने कई लोगों को ये ऑब्जर्व किया है कि जब आप उनसे बोलते हैं कि आप कसरत करें या आप थोड़ा सा अपने फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, तो लोगों को ये लगता है कि हम उनके मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग टाइम की बात कर रहे हैं, और जो उनके लिए पॉसिबल नहीं रहा। तो मैं आपके माध्यम से भी ये बताना चाहूँगा हमारे श्रोताओं को कि टाइम इज नॉट द रेस्ट्रिक्शन। मतलब अगर आपको सुबह नहीं उठते बनता, बिल्कुल मत उठिए, आप बिल्कुल सुबह वाली कसरत मत करिए, वो अच्छी है लेकिन सबसे अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप उसके अलावा किसी और टाइम में कर रहे हो तो वो फायदेमंद नहीं रहेगी। आपको अगर रात को 10 बजे टाइम मिलता है, सोने से पहले आधा घंटा अपने आप को दें, थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा योगा भी कर सकती हैं आप, या फिर एक सिंपल वॉक, 5-6 हज़ार स्टेप्स की एक सिंपल वॉक भी आप करें, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी, आप 15 दिन के अंदर खुद के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज होते हुए देखेंगे। तो ये टाइम रेस्ट्रिक्शन बहुत लोग मानते हैं कि अच्छा किसी ने कसरत करने की बोल दी, अब सुबह कौन उठाएगा, मुझसे तो नहीं उठा जाएगा। तो ये टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको रात को 12 बजे टाइम मिलता है, आप तब कर सकते हो।
1: और मैं ना और आपको किसी आप जो फिटनेस शुरू करोगे ना, उससे अपने आप टाइम मिलेगा
0: जी,
1: क्योंकि ना आप जो फास्ट हो जाओगे ना बाद में, दिन भर सुबह के आधा घंटे से कसरत से, वो टाइम आपका पूरे दिन का एक घंटा से ज्यादा बचाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि अपने आप वो फास्टनेस आप में आ जाता है
0: जी,
1: और पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि पूरा दिन अपन अगर अपने टेंशन के बारे में, काम के बारे में सोचेंगे, फिटनेस में कोई भी फिटनेस हो या शौक हो, उसमें आप अपार्ट फ्रॉम सोचते हो, वो जो टाइम होता है ना, वो आपको एक रिफ्रेशिंग फ्रेगनेंस दे जाता है लाइफ में।
0: बिल्कुल बिल्कुल। सो आप अंगदान के बारे में कुछ कह रही थी,
1: तो यही है कि इसीलिए आप मेन फिटनेस करो तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर भी पड़ी तो सबके लिए सोचना शुरू करोगे ना, तो आपके लिए अपने आप सोचा जाएगा। तो हम क्यों सोचे, हमारे घर में किसी को जरूरत नहीं है, दोस्तों को नहीं है, ये बात छोड़ दो, सिर्फ हम जहाँ पे है ना, वहां से हम क्या दे सकते हैं, इस बारे में सोचना शुरू करोगे ना, तो कम से कम उसके बारे में बात करो, ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस के बारे में, या किसी को ज़रूरत है उसको हेल्प करो, या जो दूसरे को हेल्प कर रहा है उसको सपोर्ट भी करो ना, तो भी वो बहुत बड़ी चीज़ होती है।
0: और जितनी ज़्यादा हम बात करेंगे उतनी ज़्यादा भ्रांतियाँ ख़त्म होंगी, क्योंकि अक्सर हम लोग कोई भ्रांति ऐसी सुनते हैं किसी के मुँह से, तो हम लोग वो अपने तक रख के बैठ जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस ही नहीं करते, तो वो क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होता। तो अगर आपको ऐसा कुछ सुन रखा है, तो आप अपने परिवार में, अपने दोस्तों से, या फिर आप हमारी हेल्पलाइन पर भी कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, हम उन भ्रांतियों को तोड़ेंगे और आपको सही जानकारी देंगे। तो प्रीति जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें इतना टाइम दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे श्रोताओं को बताई।
1: धन्यवाद, थैंक यू।
0: तो दोस्तों, ये थी प्रीति मस्के जी, जिन्होंने 4 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आमतौर पर लोग जब शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद ये सोचते थे कि अब तो यही हमारी लाइफ है और बस घर गृहस्थी में ही जुटना है, तो प्रीति जी एक परफेक्ट एग्जांपल है कि वो चीज़ तो कहीं गई नहीं है, वो चीज़ तो आप तब भी कर सकते हो, लेकिन समाज के लिए कुछ ज़रूर करना चाहिए। जैसे कंपनीज की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वैसे एक इंडिविजुअल की भी CSR पॉलिसी होनी चाहिए कि आप समाज से जितना भी कुछ लिया है आपने आज तक, उसको वापस क्या दे रहे हो। तो मैं आप लोगों से, सभी से यही विनती करना चाहूँगा कि प्रीति जी जैसे समाज को बहुत कुछ देने की कोशिश कर रही हैं, हम सभी को भी कुछ ना कुछ समाज को देना चाहिए, ज़रूरी नहीं है अंगदान, आप कोई और चीज़ टॉपिक भी उठा सकते हैं और किसी ना किसी रूप में समाज के प्रति थोड़ा सा जागरूक बने, समाज के प्रति थोड़ा सा उत्तरदायी बने। इससे बहुत सारी चीज़ें हमारी कंट्री की, हमारे वर्ल्ड की सुरक्षित भी होती हैं और ठीक भी हो जाती हैं। तो इसके साथ ही मैं आज के शो में आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार हम जल्दी से हाजिर होंगे आपके सामने एक नई हस्ती के साथ और एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।
2: आओ मिल के एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिल के एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं। आओ मिल के एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिल के एक दिया जलाएं, दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं।
3: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंग दान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ऐसे युवाओं को लोक सेवा में लाने की जरूरत पर जोर दिया जो सरकारी पद के लिए नहीं बल्कि जन सेवा के लिए प्रेरित हों।
1: हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो, इसलिए जरूरी है।

0: इस रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवो भव है और नागरिकों की सेवा करना सबसे जरूरी है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है। मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार सशस्त्र बलों के बीच आपसी तालमेल और एकीकरण पर बहुत जोर दे रही है। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर श्री सिंह ने कहा कि अगर विचार किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर और कुशल हो जाएगा। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने का आग्रह किया।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
1: दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। भारत जापान एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हराया। फाइनल शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। एशियाई खेल 2026 में भारत ने नौकायन के क्षेत्र में अपना पहला पदक जीता। मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने पुरुषों के स्किफ स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। ग्रीको रोमन पहलवान नितेश ने आज मंगोलिया के गंखू यांग गनबातार को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराकर पुरुषों के 97 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम को सेमीफाइनल में कांस्य पदक मिला। भारत के कुल पदकों की संख्या 62 हो गई है, जिसमें 10 स्वर्ण, 22 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में भारतीय कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता। गणेश ने कांस्य पदक के प्लेऑफ में वियतनाम के कोंग डुक डांग को 149-144 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीवी हारेगा, देश
1: जीतेगा। मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
2: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है?
3: कहाँ रखेंगे टीवी?
4: अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी।
1: टीवी देखने बुलाएंगे?
4: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
1: ए छोड़ो, रुको, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
5: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
1: क्यों?
5: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके।
6: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
8: मुझे उड़ना

0: अरे इसे क्या हुआ?
1: सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालेंगे।
1: अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
1: एकदम।

0: ते ही फोन देखने की आदत आपकी जिंदगी पर क्या असर डालती है? एक बात पूछूं, सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले फोन की तरफ क्यों जाता है? क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पूरे दिन के विचारों को प्रभावित कर सकती है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, उस समय मन को अच्छे विचार देने चाहिए, लेकिन अगर आँख खुलते ही तुम फोन में लग जाते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत मैसेज, नोटिफिकेशन और रील्स में चला जाता है। फिर धीरे धीरे मन को हर थोड़ी देर में फोन देखने की आदत हो जाती है। तुम कोई काम कर रहे होते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है। समय कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि फोन मत चलाओ। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को याद करो और सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है। उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
1: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान करूँ कि घर में सुख शांति आ जाए।
2: जुबान।

नमस्ते दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी जुड़े हुए हो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समा हो गया पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत। मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहणा जिहा पंजाबी गीत।

श्रोतियों रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने होए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

यह रेडियो कुंजन धर्मशाला 91.2 MHz इस वक्त तुसी एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। ते आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम दा होर पंजाबी गीत।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
2: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो हैं।
3: कहाँ रखेंगे टीवी?
4: अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी।
1: टीवी देखने बुलाएंगे?
4: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
1: ए छोड़ो, रुको, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
5: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
1: क्यों?
5: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके। अब वो देखो शुक्ला जी आ गए, देखो।
6: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
8: मुझे उड़ना है।

0: अरे इसे क्या हुआ?
1: सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालेंगे।
1: अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
1: एकदम।
5: सुबह उठते ही फोन देखने की आदत आपकी जिंदगी पर क्या असर डालती है? एक बात पूछूं, सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले फोन की तरफ क्यों जाता है? क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पूरे दिन के विचारों को प्रभावित कर सकती है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, उस समय मन को अच्छे विचार देने चाहिए। लेकिन अगर आँख खुलते ही तुम फोन में लग जाते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत मैसेज, नोटिफिकेशन और रील्स में चला जाता है। फिर धीरे धीरे मन को हर थोड़ी देर में फोन देखने की आदत हो जाती है। तुम कोई काम कर रहे होते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है। समय कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि फोन मत चलाओ। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को याद करो और सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है। उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
6: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान करूँ कि घर में सुख शांति आ जाए।
7: जुबान।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहां सारें दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर होई हो कार्यक्रम लेके माटी दी महक। श्रोताओं कर दे ने कार्यक्रम दा आगाज इस प्यारे दे गीते कने तोहां सारे इन्ने बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गूंज अपने बंदी।

तुहां सारें दा रेडियो गुंजन धर्मशाला इन्हें तुहां सारे कार्यक्रम सुना दिन माटी दी महक आशो तो बढ़ते न कार्यक्रम जग गए इन्हें सुनते निक और प्यारा दिया गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो हाँ सारे ट्यून कितने है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला। मैंने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी मैं है एक श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम चल गया कने सुन दे निक और प्यारा दिया गीत।

हम इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देने माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि करने ता श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम चल गए कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

सारें दा रेडियो गुंजन धर्मशाला इन्हें तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दिन माटी दी मैं एक आशो तो बढ़ दिन कार्यक्रम जग गए इन्हें सुन दे निक और प्यारा दिया गीत।

सारियां ट्यून कीते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला। अने इस वक्त कार्यक्रम चलिया है माटी दी महक। श्रोताओं सुनते ने एक और प्यारा दिया गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो हाँ सारे ट्यून कितने है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला। मैंने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी भी मैं है एक श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम चल गया कने सुन दे निक और प्यारा दिया गीत।

वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देने माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि करने ता श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम चग गए कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

मैं तुहां सारें दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तुहां सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना दे ना माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि कन्ने तो बढ़ते न कार्यक्रम च अग्गे कने सुनदे ने इक और प्यारा दिया गीत।

92.2 MHz पर ए तो हाँ सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महक कहाँ श्रोताओं अज कने कार्यक्रम च बस इतना ही तो हाँ सारे ने बढ़ी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गूंज अपने पंदी।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीवी हारेगा, देश
1: जीतेगा। मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
2: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
3: कहाँ रखेंगे टीवी?
4: अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी।
1: टीवी देखने बुलाएंगे?
4: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
1: ए छोड़ो, रुको, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
5: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
1: क्यों?
5: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके।
6: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की,
8: असली तरक्की।
7: एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: मुझे उड़ना

0: अरे
1: इसे क्या हुआ?
2: सांप ने काटा, सांप ने।
1: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
1: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालेंगे।
2: अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
1: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: एकदम।
5: सुबह उठते ही फोन देखने की आदत आपकी जिंदगी पर क्या असर डालती है? एक बात पूछूं, सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले फोन की तरफ क्यों जाता है? क्या तुम्हें पता है? ये तुम्हारे पूरे दिन के विचारों को प्रभावित कर सकती है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, उस समय मन को अच्छे विचार देने चाहिए। लेकिन अगर आँख खुलते ही तुम फोन में लग जाते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत मैसेज, नोटिफिकेशन और रील्स में चला जाता है। फिर धीरे धीरे मन को हर थोड़ी देर में फोन देखने की आदत हो जाती है। तुम कोई काम कर रहे होते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है। समय कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि फोन मत चलाओ। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को याद करो और सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है। उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
6: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान करूँ कि घर में सुख शांति आ जाए।
7: जुबान।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश
1: जीतेगा। मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
2: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
3: कहाँ रखेंगे टीवी?
4: अपनी वो कोने वाली मेज पे। दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
1: टीवी देखने बुलाएंगे?
4: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
1: ए छोड़ो, रुको, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
5: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
1: क्यों?
5: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके। शुक्ला जी
6: वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
8: मुझे उड़ना

0: अरे
1: इसे क्या हुआ?
2: सांप ने काटा, सांप ने।
1: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
1: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालेंगे।
4: अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
1: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
5: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
4: एकदम।
6: सुबह उठते ही फोन देखने की आदत आपकी जिंदगी पर क्या असर डालती है? एक बात पूछूं, सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले फोन की तरफ क्यों जाता है? क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पूरे दिन के विचारों को प्रभावित कर सकती है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, उस समय मन को अच्छे विचार देने चाहिए। लेकिन अगर आँख खुलते ही तुम फोन में लग जाते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत मैसेज, नोटिफिकेशन और रील्स में चला जाता है। फिर धीरे धीरे मन को हर थोड़ी देर में फोन देखने की आदत हो जाती है। तुम कोई काम कर रहे होते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है। समय कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि फोन मत चलाओ। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को याद करो और सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है। उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
7: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान करूँ कि घर में सुख शांति आ जाए।
8: जुबान।

नमस्कार श्रोतों, FM बैंड 91.2 MHz पर वेली गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और हम सचिन कपूर हाजिर बुजुर्गो कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा ले करी। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रहा, सभी श्रोतागण रहा। क्या हाल चाल में श्रोतों दिन है, उम्मीद कर दें खरे भूणे तो है सब ठीक भूणे हैं श्रोतों और बंदे ने कि ठीक रहने के सो इंसान रहे हथ बुंदा इज्जत मान सम्मान अपना करना सो इंसान रहता। और एक कहावत बड़ी पुराने है श्रोतों कि इज्जत ताए मुड़ी सकते जहने तो है कसकिरी इज्जत करना के सो जान देन कसकिरी इज्जत तो है कर देन। और लाइफ में श्रोतों इंसान मुझे ये लगता कि बहुत सारे ऐसे आजकल तो हल्के हल्के बच्चे अंदर मतलब इतना एरोगेंट है, इतने एरोगेंट पूछू रहे कि पूछा मत इतना एटीट्यूड है तिन्ना अंदर है ना। हर किसी का अपनी अपनी जगह के सो मान सम्मान बुंदा, हर किसी का अपनी अपनी जगह के श्रोतों सो इज्जत भाव बुंदा है ना। आज हम ये गल इसलिए करूँ करता कि आज कुछ दिन ही ऐसा है श्रोतों, यानी कि आज कुछ स्पेशल दिन है। क्या स्पेशल दिन है श्रोतों, ये तो हो गया है जरूर

शेयर करते हैं। अच्छा श्रोताओं तुसु दसना चाहते हैं आज जो ओल्ड पर्सन हैं इंदे जो बुजुर्ग पर्सन हैं इंदे त्यारा मान सम्मान करना के सो बहुत ज़रूरी है। ये अचकना दिन के आसु आसु सिखंदा श्रोताओं और साधारण भाषा में अंग्रेजी की भाषा में बोलूँ तो आज इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन हाश होता हूँ तो ठेरे बारे है ज़रूर गलबात कर लें तो सो गया और साझा कर ले श्रोताओं तो कार्यक्रम सचिन कपूर सो गया हूँ कर दें इंदी अपनी गप्पा आइए जी आगाज़ बिल्कुल करी लें दिन कार्यक्रम रहा और आगाज़ तो बाद फिर बाकी री ज़रूर बहुत सारी जानकारी हीन जो है बिल्कुल कोशिश कर दें कि अपने श्रोता तक के आंसो ज़रूर पहुँचाई दिन तो आइए हूँ दिन तुसो सभी सो आगाज में ये प्यारे दे गीत तुंदे सभी रे रेडियो सेट में बहरहाल तो कॉल जरूर कर सकते हैं नंबर बोले चलो तो तुसो दसना 7018 8 7 0 9 पर नंबर एक मौके फिर आऊँ शेयर करनो साझा करनो 7 0 8 8 7 0 9 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और कॉल कर करे अपना पसंदीदा गीत सुनी सकते हैं अपने क्षेत्र रे जानकारी किया सो साझा कर सकते हैं। यह गलारा बिल्कुल विशेष ध्यान रहे श्रोताओं की रेडियो मंच गल साझा करने लायक बहुत दसने लायक बहुत जो कि हजारों लख मनु के ना सो तुसो रेडियो मंच हूँ।

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के नो चल रही ता अकमो के फिर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। चलिए श्रोतो कार्यक्रम जो हगो बढ़ंद हिन और कुछ एक खास जानकारी के अनसोता तो सो गया सू शेयर करनी करनी इन द्रोतागण के नो असोगी बाखूबी जुड़ी भी चुक रहे हैं श्रोतों और बिल्कुल असोगी जुड़ी चुक रहे हैं इन द खास इन द जितने भी श्रोतागण हैं इवन की। चलिए तो हाँ सचिन कपूर है जी, नमस्ते हाँ सचिन कपूर कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर फिर एक मौके हाजिर हुआ तुम्हें सभी रे रेडियो सेट में वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच इन द श्रोतागण असोगी बिल्कुल कनेक्टेड हैं और एक मौके फिर की असो जरूर दसना चाहता हाँ श्रोतों कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन हाँ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस था आज। ये दिवस पूरे विश्व में हर साल अक्टूबर जो कि आसो मनाया गंदा है यानी कि आज के दिन श्रोतों और ठेरा मुख्य उद्देश्य समाज में बुजुर्ग रे अधिकार वास्ते त्यारे स्वास्थ्य कल्याण और त्यारे अमूल्य योगदान रे प्रति मनु जो जागरूकता बढ़ाने वास्ते श्रोताओं और साथ ही वृद्धजना रहे सोगी के सो भूने वाले दुर्व्यवहार और अन्याय जो रोकने वास्ते भी किया सो आज का दिन मनाया गंदा हा श्रोताओं और मनंदे हिन ताकि इन बुजुर्ग हो गए किया सो दुर्व्यवहार न भुआ इन सियाने हो गए किया सो अन्याय न भुआ इति वास्ते आज का दिन किया सो याद करने वास्ते अहम मनंदे हिन अक्टूबर जो बहरहाल इन श्रोतागण लगातार सोगी कनेक्टेड हिन आप उस दिन कौन बोलूं देन और कड़ी थो बोलूं देन। नमस्ते जी, हेलो, नमस्कार जी, हाँ जी जी कौन बोलूं देन और कड़ी थो बोलूं देन।
1: सातड़ों दे बोल रहे मंगल जी।
0: हाँ जी
1: सातड़ों में दे बोल रहे।
0: हाँ जी चातड़ों थो कौन बोलूं देन जी।
1: मंगल।
0: हाँ जी मंगल जी क्या हाल चाल ठीक ठाक।
1: बढ़िया जी बढ़िया।
0: करे लगुरेन
1: बस ठीक है।
0: क्या आज का दिन मंगल जी कदे गो तुम आज का दिन है कुछ तो है कुछ नोआ इमेजिन करो हा कुछ नोआ सोचो हा या कुछ नोआ भुआ आज का दिन तुम दा या फिर ये गो एज इट इज ही गो।
1: चलो तो काम ही है लाया नहीं।
0: अच्छा
1: सोचने टाइम नहीं है ना।
0: हाँ जी सोचने टाइम नहीं है क्या बात
1: है। हाँ जी काम लाया नजर आया।
0: क्या बात है क्या बात है। चलिए बहुत अच्छी गल है कि इतने तो है बिजी हिन कि तुसुले सोचने रे भी टाइम नहीं है।
1: क्या करना जरा सारे काम हो जाए काम में आने से मकाई लंदे बाल लग रही सोच दे ना फिर।
0: अच्छा चलिए ठीक है जी। मंगल जी को क्या फरमाइश है तुंदे।
1: हाँ
0: फरमाइश की है मंगल जी तुंदे।
1: फरमाइश है वो क्या ना मेल ले जाना काल करे।
0: अच्छा चलिए ठीक है मंगल जी जरूर समय लगो तो जरूर हुना ले सकता जो धन्यवाद था इन द अगले श्रोता के सो भी है असोगे कनेक्ट थी है लेकिन डिसकनेक्ट हो चुके हैं ता श्रोतों तो सब बन रहे हैं इस समय आज सचिन कपूर सोगे और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के नो लाइव हूँ कर देना सो सोगे और कस की बड़ा खूब बोल रहा ना श्रोतों की वक्त रे कल के असो बड़े अच्छे और बड़े प्यारे आ कि वक्त के असो अग जिना ना रहा हा वक्त बदलिंदा जरूर हा सो अहंकार के असो कदी ना करना श्रोतों हम क्या सो कदी ना करना कत्सी पर भी ना करना कत्ती पर भी ना करना चिंदा हा कजो के हम ए अहंकार रावणा रा ना टेको तह त फिर भी नॉर्मल दे प्राणी हिन है ना इंदा कसीरा भी अहंकार हम क्या सुकसी वास्ते भी खरा ना बंदा शो तो अक्सर रिश्ते बिगाड़दा हा और अक्सर क्या सो इंदा हगूरा रास्ता गया सो खराब करदा हा शो तो इंदे कर्म किया सो खराब करदा हा। बहरहाल अगले श्रोता आसू के कनेक्टेड हिन पुछ दिन कुन बोलूं दे। नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी सर।
0: हाँ जी नमस्ते जी सोनू जी कड़ी बोलूं देन अच्छा योल तो ठीक नहीं तो है जी। बढ़िया जी बढ़िया। और किना तंदे योल रा तो है बड़े लकी पर्सन हिन के आज़ादी थों बाद की असो तुंदे पंचायत बने 1947 थों बाद तुंदे पंचायत की असो बने या 2026 वगे जिगरे क्या कुछ काम हुआ तुंदी पंचायत में सोनू जी एज अ योल रे निवासी तो है क्या दसना चंदे अली तक
2: तो कोई काम नहीं हुआ चल रहा रोड़ा रा इंदा
0: अच्छा
2: जी रोड वगैरह खराब
0: रोड खराब है तो पंचायत बन रहे तो काफी टाइम बचू गया कोई कार्रवाई ना बचू कर दी कोई कुछ ना बचू कर दा
2: कोई कार्रवाई नहीं
0: हुई। अच्छा चलिए उदाहरण देना चाहता अजीत नेहरिया हिन सुधेड़ रहे प्रधान हिन तिन्हे इलेक्शन जीतने थो बाद हार्डली कोई हफ्ते बाद किया सो अपने जनता वास्ते किया सो कम करना तिन्हें शुरू करी ते थी तिन्हें आकर 2.5 लाख ब्रिज किया सो बनाओ थो है ना तत्थों बाद और भी रोजाना के सो हर रविवार जो अपनी पंचायत रमन इकट्ठे करी करी सफाई अभियान के ना सो कर दे हिन बेशक त्यारे सो ग्राउंड भून बेशक डंगे भिड़े भून सो तैयारी के सो तस प्रकार री कर दे हिन मतलब तैयार कर दे हिन। चलिए तो होप सो उम्मीद लगाई कर रखा कि योल रहा भी कुछ ना कुछ विकास बुला काम बुला है। हाँ जी
2: योल तो बड़ा मुश्किल है कोई हुआ बिना कोई कार्रवाई बिना कोई काम ना
0: योल वास्ते बड़ा हाल बेहाल है योल रहा और योल रहे जो बेचारे स्थाई निवासी हैं सो खास कर हूँ टीका चतैड रहे बलना चाहन कसू की तरह जस रोड़ा रही तो है जिक्र करू कर दे तस रोड़ा तो ऐ भी अक्सर अमूमन तीन में तक न सो गुजर देन था हाल बेहाल वाकई में ना कोई डिपार्टमेंट हुनवाई करता ना कोई स्थानीय प्रतिनिधि हुनाई करू कर दे हैं और ना ही कोई अन्य प्रतिनिधि हुनाई करू कर दे हैं वाकई में बड़ा हाल बेहाल है सोचना चाहिए गवर्नमेंट जो जो स्थानीय लोकल जो एमएलए हैं तीनों भी इस गल्ला वास्ते सोचना चाहिए कि पानी वास्ते अगर तुंदे धर्मशाला भी जनता परेशान बुचू कर दी तो कस कदर यह स्मार्ट सिटी बली सकते हैं कि यह स्मार्ट सिटी में रहो कर दे कि पंचायत किया सो पहली बार बने और बहुत अच्छी डिवेलप किए सो बुचू कर दे मतलब जीरो कम के सो इस वक्त जाए तो है पानी वह ले लिया जाए तो है सड़क है ले लिया है ना छोटी छोटी चीज़ है ना इतना है बंदे ने है डेवलपिंग भारत में रहो कर दा इंदा भारत डेवलप करो कर दा नो डाउट करो भी कर दा लेकिन इंदा ग्रां कड़ी डेवलप करो कर दा चलिए होप सो कर दें सोनू जी की सब अच्छा बुआ बेहतरीन बुआ है ना
2: जी
0: जी सोनू जी क्या फरमाइश
2: रांझुआ हाँ जी
0: अच्छा अच्छा ओंदा तो जानदा वांजू डंगी है ओंदा चलिए ठीक है जी जरूर हुन ले तो सुए गीत ठीक है सोनू जी धन्यवाद। तो श्रोतों कार्यक्रम तो ऐसा भवन कर देने इस समय इंदी अपनी गप्पा और कार्यक्रम मंज चलिए सोनू जी थी जो कि योल टिकट तैड़ रहे निवासी थी है और वाकई में इतस रोड़ा रहा हाल किया सो बड़ा बेहाल हा और बहुत मुश्किल है बहुत ज़्यादा मुश्किल है पानी भी समस्या दसू कर देन कि पानी भी समस्या भी किया सो आए दिन रेंदे आ न जाने कहो चैनलाइज करने में दिक्कत था कि कति अंदर दिक्कत आज दिन तक समझ ही ना आई कि कति अंदर दिक्कत है रोड सो आई थिंक इतने साल बुझ गए दस रोडो इतने बड़े बड़े गड्ढे दस रोडा मंच प्यूरे हैं वहीं सब माँ नोडरानी वे चरना में विंद है लेकिन अब पंचायत बनने की उम्मीद थी कि पंचायत बनने के बाद किया सो रोड किया सो ठीक बुझ सकता लेकिन हले तक कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है दस रोड आ रही लेकिन चल दें अगले श्रोता जो कनेक्ट कर दें नमस्ते जी
3: नमस्कार जी राधे राधे जी
0: हरे कृष्णा जी हरे कृष्णा राधे राधे
3: और सर कैसे हो जी आप
0: बहुत बढ़िया जी कौन बल्लन देन और कड़ी थम बल्लन देन
3: जी हाँ तो ही आप पालम वृत्त ने पर वैसे दिल्ली से बोल रहे जी
0: दिल्ली
3: हाँ जी हाँ जी,
0: क्या बात है, दिल्ली एग्जैक्टली कड़ी थो बल्लो गर्दन तो है
3: दिल्ली ही बोल रहे जी ते एयरपोर्ट पे।
0: अच्छा अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, तो दिल्ली गर्मी
3: बड़ा अच्छा प्रोग्राम, बड़ा अच्छा प्रोग्राम लगता, दिल्ली का मौसम गर्मी बतेरी है।
0: अच्छा
3: हाँ जी हाँ जी,
0: और अपना हिमाचल पालमपुर याद इंदा
3: बहुत ज्यादा, ये मानो कि डेली जो भी धर्मशाला फ्लाइट के लिए जाते हैं तो वो तब तो ऐसे लगता है यार घर के बंदे हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ये फीलिंग की है सो इंदे है ना, जाने वे है बाहर रन देता है फीलिंग इंदे की, जाने वे है गर्म बाहर रन देता अपने के ना सो बड़े याद इंदे है ना।
3: हाँ जी हाँ जी,
0: सो ही बोल देना जी की मतलब अपने री वैल्यू अपने री कदर की सुतहने पता लगदे जहने अह अपने थों दूर बुचगान
3: हाँ जी जी,
0: अब जे तो दिल्ली पे खुरे निस समय और मिस कर देन तो दसु कर देन कि हर फ्लाइट मा जो धर्मशाला फ्लाइट इंदे या कांगड़ा फ्लाइट एयरपोर्ट मा इंदे या गगन मा तो ये लगदा कि सब अपने पे खुरे इंतती है ना हाँ
3: जी जी,
0: बेशक तुंदी तकदीमा कोई भी किए सो जान पहचान।

0: ना बुआ, कसियों की तो है आज दिन तक गल ना कर रही बुआ, है ना। लेकिन फिर भी सुन अपने
1: अपने मां चले ता छट्टा जेड़ सो विदेशी होंदे बाहर आते उन्हें देखे भी इं लगता कि अपने वक्खे दिन वेई
0: ए फील इन द गेम देखो अपने बिखरे है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। तो जनाब कड़े कहने तो हूँ कर दें तो है इस कार्यक्रम जो
1: इस प्रोग्राम में सुना मैं एक हफ्ते थे।
0: अच्छा एक अलिया हफ्ता हुआ, क्या बात है।
1: हाँ जी जी बस ये दो तीन मैं कर जगह और भी मैं डाउनलोड कराई थे घर भी सुन देने मम्मी पापा सिस्टर सुन देने।
0: अच्छा क्या बात है।
1: हाँ जी बड़ा अच्छा प्रोग्राम लगता वैसे।
0: धन्यवाद जी धन्यवाद।
1: हाँ जी जी
0: तुंदा आशीर्वाद है जी, तुंदा सभी रा प्यार है कि नाचीज रा कार्यक्रम तुसु इतना अच्छा लगदा।
1: हाँ जी जी
0: जी
1: दुआ है ना पहला पहला भी है ही रेडी सुन रहे मेरे दादा होंदे ते घर रेडियो रहता था भी प्रोग्राम लगदा धर्मशाला था बड़े सुन रहे हैं शामी।
0: अच्छा क्या बात है।
1: हाँ जी जी
0: जी
1: आजकल समय मतलब दुनिया फोन में चाहिए सारी आजकल।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल व्यस्तता व्यस्तता सब के सो फोन अंदर है।
1: हाँ जी हाँ जी अजकल तो एक दूसरे वास्ते टाइम भी नहीं है बंदे को।
0: नहीं है नहीं है बिल्कुल नहीं है।
1: हाँ जी पहला हुंदा हा पहला भी चलो पीने पुने च भी बाहर निकलते घूमने घूमने तो भी त्यार टोले पे बैठ के यारी दोस्ती इकट्ठे बैठ गप मारते अजकल कुछ नहीं सब खत्म हो गई है।
0: सब सब सब खत्म है जी सब खत्म है। सो दौर ही खत्म बुझ गयो सो दौर खत्म बुझ गयो सो दा दर्द खत्म बुझ गया सो इंसानियत खत्म बुझ गई और बहुत चीज़ अगेन सो चेंज बुझ गई जी बहुत ज़्यादा चीज़ तो है तफरी है तो है तफरी भी किए सो अच्छा वक्त है रिल्यूरा मतलब सो वाला दौर किए सो एनालाइज कर रहा है फील कर रहा है ना जो इन्हें वाली जनरेशन आता हो तो पता भी ना बोना कि दौर क्या दौर तो।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी चलिए जनाब बहुत अच्छा लगा जी जी।
1: हाँ जी जी मेरे ने एक गाना सुनाया है एक बड़ी रे प्यारा भी है प्यारे वास्ते
0: जी जी
1: क्योंकि वो डेली आपका प्रोग्राम सुनते हैं उनके लिए।
0: अच्छा क्या बात है मतलब सॉन्ग के सो डेडिकेट करना तुसु
1: ना तो मैं तो ले नहीं सकता क्योंकि वो दे गाने सुना दे होने इस करके तो प्यारा दे गाना लाइन नहीं कोई
0: प्यारा दे गीत प्यार भावना रे गीत है।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: चलिए ठीक है जी जरूर तुंदी फरमाइश तो है दिल्ली तो कॉल करे जरूर पूरे होने।
1: ओके जी थैंक यू जी धन्यवाद।
0: थैंक यू जी थैंक यू सो मच जी नमस्ते
1: नमस्कार जी।
0: श्रोतम एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून किया शुक्र रहा रेडियो गुंजन जो और आऊँ सचिन कपूर हा बरहर कार्यक्रम जो है ज़रूर आगू बढ़ल ले श्रोतों और अन्य जानकारी तो सोगी शेयर कर ले साझा कर ले बने रहे तो सब आरजे सचिन कपूर सोगे गूंज अपने पन रे।

चलिए श्रोतों, कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के अनुसार इस समय चल रही हैं और तो है सब आर जे सचिन कपूर सो की किया सो हुनु कर देन। आइए श्रोतों, कार्यक्रम जो थोड़ करी हगो बढ़न दे हिन और बिल्कुल श्रोतों, इंसान जो ना मानसिक शांति की सो बड़ी ज़्यादा ज़रूरी बन दे। अगर इंसान मानसिक शांति हा से भेजा है माँ और सो मानसिक शांति मंझा तो इंसान की जो सब कुछ कर ही सकता कर ही लेंदा हा और हगू बड़ी गंदा हा शतो। लेकिन जस इंसान मंच मानसिक शांति ना बोआ दिमाग कर ही शांति ना बोआ तो सो इंसान क्या कर सकता, सो इंसान कुछ ना कर सकता। केवल और केवल सोच विचार रे अलावा और पचू ढकेने रे पचू तस्यो मतलब लाइफ में के सो पचू ऐसो बुंदा गंदा हा श्रोतों हगूँ ना बढ़ी सकता हा क्यों कि सेरा सेरा मानसिक जो तनाव है सेरा श्रोतों सोई ना ठीक बुना तथा सागू को बढ़ना।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ये ट्यून कर रहा और कार्यक्रम में इस समय इंदी अपनी गप्पा कैंसो चल रही इन श्रोताओं इंदे बहुत सारे श्रोता कैंसो कॉल करो करते हैं जरूर सभी कनेक्ट किया सो करते हैं इन श्रोताओं। हेलो नमस्कार जी।
1: हेलो नमस्ते सचिन जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते।
1: और ठीक ठाक?
0: बढ़िया जी बढ़िया। तो दस तो ठीक ठाक ना?
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
0: और कौन बोलूं देन और कड़ी थम बोलूं देन
1: दाढ़ी दे बोलूं बोल ना मेघनाथ
0: दाढ़ी थम बोलूं कर देन मेघनाथ जी।
1: हाँ जी।
0: अच्छा और मेघनाथ जी राजीव बाजी
1: राजीव बाजी जी राजीव माता भजन सुनाई दिया।
0: अच्छा अच्छा और मेघनाथ जी कदेर हो आज कना दिन तुंदा?
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया
0: बहुत बढ़िया। आज मेघनाथ जी तो है चलो इंदे बुजुर्ग हैं आज अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस भी आ तो क्या संदेश देना चाहते हैं तो है नौजवान पीढ़ी जो और जो तुंदे सहयोगी हैं जो अपू भी बुजुर्ग ने तिया भी क्या है संदेश देना चाहते हैं कि नौजवान पीढ़ी सो के किया सो कस प्रकार हो गई तालमेल रहा कि तुंदा प्यार किया सो बने रहा और नौजवान पीढ़ी जो भी क्या संदेश देना चाहते हैं कि बुजुर्ग सो के किया सो कस प्रकार हो गई रहन।
1: पहली खबर तो तुम्हारा अखबार दो लड़के अपनी माओ ही रही है और

0: कर ली खबर कहे
1: अतुल जी आवाज की है सो कटिव कर दे।
0: करना
1: हेलो
0: चाहिए ना जी, दुर्घटना तो करना चाहिए।
1: हेलो जी आवाज चुंदी जी।
0: आई आवाज आ रही।
1: अच्छा जी क्या दसू कर दिन तो है।
0: मैं बोलिया दो लड़के अपनी माँ हॉस्पिटल नहीं है, कहते बिल्कुल ठंडी आए, 3 दिन तक अपने से वापस नहीं गए, और फिर
1: अच्छा
0: वो पुलिसा वाले ने ये उनका कहना तय करे ठंडी है, क्या पता क्या बनना, आजकल का ऐसा मौसम ऐसा चले आता है, बुजुर्गों की फसल तो ऐसी है।
1: अच्छा चलिए ठीक है जी। तुसु भरमाणी माता का गीत के सो जरूर होने ले है। धन्यवाद। चलिए अगले श्रोता सूगी के निकटिल हिन। नमस्ते जी।
2: नमस्ते भैया। राधे राधे। और
1: राधे राधे जी। राधे राधे।
2: ठीक ठाक थारे
1: बहुत बढ़िया जी। तो है बल्ले तो ठीक ठाक ने।
2: भाई खरा भैया।
1: कौन बल्लन देन और कड़ी थम बल्लन देन।
2: हाँ जना बगमे भाई मुरलिंग का।
1: अच्छा। तो क्या हाल चाल देखो आज का दिन तुंदा जी।
2: दिन खराब आए बढ़िया।
1: अच्छा अंजना जी तो है मतलब मिडल वाले ना तो है बुजुर्ग ना तो है यंग ना
2: बुड्ढा ना वे
1: ना तो सुहा है बुजुर्ग वाली
2: बुड्ढा
1: सकते हैं।
2: साड़ा वे अबे
1: हाँ जी
2: बुड्ढा साड़ा बुड्ढा बिच रहा भी
1: चलिए लेकिन फिर भी बुड्ढे अंदर अच्छा, मतलब कदम वाले था ना रखो वाले तो है होटी रे बाले थोने बुए ने।
2: होती है होत्री वाला देखो पूछना नहीं था चल दक्षिणा।
1: पहले चलेगा ना।
2: हाँ तारा जब कली जी बरुंबरी
1: चलिया इता चलिए इता बड़ा कठिन दे सवाल और तेरा सरल दे उत्तरे अंजना जी की मौत की या मौतरा कोई पैगाम थोड़े निकालने भेज सकते है ना।
2: जी अगर सांझ खाए पे सारा पता नहीं
1: वगैरह पता नहीं मतलब सो अगली 10 मिनट रहना पता कि 10 मिनट क्या बुझेगा ना क्या ना बोना है ना। ताई दंजना जी हूँ हमेशा बोलनो कि कोई भी रिश्ता दस यू संभाले करे रखा है ना गिले शिकवे के ना सो ना रखना चिंदे ना ना क्योंकि जिंदगी का भरोसा तो ने फिर पश्चाताप लगता कि ओ हो आऊँ इसी होगे कने ही लूरा बंदा या कने ही ल्योरे बंदे ता है ना बंदा या
2: बिल्कुल
1: ना ठेर तक किसी भी रिश्ते में क्या सो गिला शिकवा ना रहना चिंदा कोई
2: बिल्कुल ना बिल्कुल ना
1: कोई गल बुरी लग दी है तो सो बली ते कि यार मुझे ना तेरी फलानी गल की है सो बुरी लगे थे है ना दस दस इतने कि मुझे फलानी गल क्या थी सो बुरी लगे थे यार तो चल अब यह गल जो खत्म कर देन है ना। लेकिन रिश्ते रिश्ता तोड़ना और रिश्ते में कदरी ना पाना बेकदरी करना ता मुश्किल रहता फिर रिश्ता नहीं पाना। अंजना जी कौन दिन गीत सुनना पसंद कर ले।
2: गाना भाई तुझे दादी माता के पास ना ये तुम आवाज बड़ी प्यारे न्यू भी बड़ा ख्याल बन दे तुझे।
1: चलिए अंजना जी अभ्यास रहता इंदा गले जो थोड़ा करे साफ करने में। न्यूज न्यूज गदियाली वाली या हिंदी वाली।
2: अब क्या लगनी 5 बजे बाद लग दी खबर
1: 5 बजे बाद के लग दी ना। चलिए ठीक है जी। दादी माता रा भजन अंजना जी तुसको जरूर होना ले है।
2: ठीक है भाई ठीक है धन्यवाद।
1: ठीक है जी धन्यवाद। श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा कहने सो चल रही इन श्रोताओं आइए कार्यक्रम जो आगो बढ़ते हैं और बन्नी माता रा भजन और दादी माता रा भजन जरूर होने ले दिन बन्नी माता रा भजन भी के सो जरूर होना ना श्रोतों बहरहाल इंदे एक सियाने बुजुर्ग हैं बन्नी माता रे प्रांगण माँ या माता के सो बसूरे हैं और बुजुर्ग इन ते फतेहपुर थो अम्मा फतेहपुर वाली अम्मा तिन्हों की भी बहुत जल्द है कि अश्रोताओं से मीट कर ले, ज़रूर मिल ले, है ना। तो आइया बरहाल ये फरमाइश कर दें पूरी। तो ये सब इस समय बन रहे हैं आरजे सचिन कपूर सो गए 91.2 मेगाहर्ट्ज पर, और फरमाइश रहा दौर बिल्कुल जारी है श्रोताओं।

चलिए शोधो वो इस की तरह आनंद की स्व है ले लियो बल्दे ने जस यूं ना बोला था सी ना ही ना है ना तसी कोई ना रोक सकता हा ता तो है जितने भी एक्सपर्ट बून जितने भी तो है जो भी बुआ जस जो बूना सो बूना बूना शो तो ए एक गल तो भी बनता कि जो किस्मत में लिख रहा ना सो बूना बूना तो है अपनी और तो जितना भी अच्छा करने की कोशिश कर लिया बेहतरीन करने की कोशिश कर लिया जो लिख रहा सो लिख रहा लिख रहा हा बस सिर्फ ये है कि तुम दे हथ है कि तो है अपने कर्मा जो गया सो खरे बना ही सकना और कर्म ताई खरे बनी सकते इन शो तो जने ऐह खरे कर्म कर ले है ना जने खरे कर्म कर ले ना तो फिर कर्म कहूँ बदिए बूने इंदे बरहाल।

शोध एफ एम एंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन तो है ट्यून कर रो और हिंदी गप्पा हिंदी अपनी गप्पा के नो हूँ कर देती है शोधों को जो कि अब आखिरी फरमाइश दादी माता रा भजन है ना जी और समय भी पूछेगा तुम सभी तो इजाजत लेने रहा शो तो और गंदे गंदे बस जो हर बार वालों सो ही बोलना चाहता कि बुजुर्गारी सेवा की सो जरूर करा शो तो मुटेरा आदर सत्कार किया सो जरूर करा शो तो और अपनी औरतों जसेरी हेल्प हो सकते सेरी हेल्प किया तो लगता कर खाता सो जरूर करा शो तो कजो कि ऊपर हिसाब है सब जान देन कि कर्मा रा किया सो भूणा हाथ अपने हगूर कर्म सो इंदे सियाने बनते थे ना कि अपने हगूर कर्म किया सो खरा करा था सो जरूर खरा करा और खुश रहे तंदुरुस्त रहे शो तो और मस्त रहे बस यही बोलना चाहनो हाँ ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव इंदे इन शोतों लाइफ में है ना रोज़ाना लाइफ के सो चैलेंजेस चैलेंजों घेर दी है और घिर रही बंदी हर किसी भी लाइफ में अपनी अपनी टेंशन अपने अपने चैलेंजेस हैं शोतों लेकिन बेहतर करना अच्छा करना सो इंदे हाथ था बहरहाल आउन लेनू हाँ अब इजाज़त और तुहे बने रिया तुंदे अपने वीडियो

नमस्कार 91.2 MHz पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। SBI लाइफ इंश्योरेंस धर्मशाला में 45 पदों के लिए साक्षात्कार 6 अक्टूबर को। मुख्यमंत्री ने रोहडू में एंटी चिट्टा रैली को दिखाई हरी झंडी, स्वयं किया नेतृत्व। न्यूजीलैंड के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से भेंट की। 148 सरकारी CBSE स्कूलों में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू। अब इसी के साथ समाचार विस्तार से।

0: निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली ने आज बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्देशों के अनुरूप हिमाचल प्रदेश के 148 सरकारी CBSE स्कूलों में शिक्षकों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। उनका कहना है कि इस पहल का उद्देश्य शिक्षकों में अनुशासन, पेशेवर पहचान और संस्थागत गरिमा को बढ़ावा देने तथा विद्यालयों में अधिक व्यवस्थित एवं पेशेवर शिक्षण वातावरण तैयार करना है। ड्रेस कोड तैयार करते समय शिक्षकों की व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ साथ प्रदेश की जलवायु परिस्थितियों का भी ध्यान रखा गया है। निर्धारित रंगों में हल्का लाइलैक पर्पल और नेवी ब्लू शामिल है, जबकि जूते तथा निर्धारित अन्य एक्सेसरीज के लिए काला रंग तय किया गया है। महिला शिक्षकों के लिए निर्धारित परिधान में ब्लेजर के साथ साड़ी, कुर्ता व कमीज के साथ पैंट, प्लाजो या सलवार तथा टाई और ब्लेजर के साथ शर्ट ट्राउजर शामिल है। वहीं पुरुष शिक्षकों के लिए शर्ट ट्राउजर, टाई और ब्लेजर निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने न्यूजीलैंड के उच्च आयुक्त पैट्रिक राटा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सेब उत्पादन का हिमाचल की आर्थिकी में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश सरकार बागवानी को सुदृढ़ करने के लिए नवीन तकनीक व नवाचार को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने प्रदेश में सेब की बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए हिमाचल व न्यूजीलैंड के किसानों व बागवानों के लिए एक्सपोजर विजिट करवाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने प्रदेश में प्राकृतिक खेती से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि न्यूजीलैंड हिमाचल प्रदेश में सेब की बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने के लिए इच्छुक है। उन्होंने न्यूजीलैंड द्वारा प्रदेश में प्रस्तावित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिला में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहड़ू से एंटी चिट्टा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं रैली का नेतृत्व किया और विद्यार्थियों के साथ इसमें शामिल होकर नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया। रैली के दौरान रोहड़ू बाजार नशा छोड़ो, जिंदगी से नाता जोड़ो जैसे नारों से गूंज उठा। विद्यार्थियों ने भारी संख्या में रैली में भाग लेकर नशे के विरुद्ध जन जागरूकता का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नशा माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है और नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। उनका कहना है कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश भर में एंटी चिट्टा रैलियों और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ताकि युवाओं और आम जनता को चिट्टा एवं अन्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के साथ साथ उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा सके। SBI लाइफ इंश्योरेंस धर्मशाला ने महिला व पुरुष फाइनेंस एडवाइजर, पार्ट टाइम बिजनेस एसोसिएट और यूनिट मैनेजर के 45 पदों के लिए साक्षात्कार 6 अक्टूबर को प्रातः 10:30 बजे SBI लाइफ इंश्योरेंस श्यामनगर धर्मशाला यूको बैंक में होंगे। ये जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी कांगड़ा अक्षय कुमार ने बताया कि 25 से 60 वर्ष की आयु के बीच 12वीं पास व ग्रेजुएट व्यक्ति इन पदों के लिए पात्र होंगे, जिन्हें 30,000 से 35,000 रुपए प्रति माह वेतन व अन्य सुविधाएं कंपनी के नियमानुसार दी जाएंगी। इच्छुक अभ्यर्थी अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो, हिमाचली प्रमाण पत्र के मूल प्रमाण पत्र व बायोडाटा की कॉपी और यदि संभव हो अनुभव प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय दूरभाष नंबर 0182224892 पर संपर्क किया जा सकता है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सिद्ध में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रस्तावित रोपवे परियोजना अब धरातल पर उतरने की तैयारी में है। करीब 65 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रोपवे का निर्माण कार्य अक्टूबर 2026 से शुरू हो सकता है। परियोजना को दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रोपवे टैक्सी पार्किंग क्षेत्र से मंदिर के नजदीक तक बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके शुरू होने से पार्किंग से मंदिर तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भीड़भाड़ और चढ़ाई वाले रास्ते से राहत मिलने की उम्मीद है। परियोजना की जिम्मेदारी रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन संभाल रहा है। मंदिर न्यास या जिला प्रशासन सीधे इसका निर्माण नहीं करेगा। परियोजना को PPP और DVFOT मॉडल पर विकसित किया जाना है। प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले नौनिहाल व गर्भवती महिलाओं को सरकार एक्स्ट्रा प्रोटीन उपलब्ध करवाएगी। 18,925 आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए हफ्ते में 2 दिन अंडा व दूध दिया जाएगा। सीएम सुक्खू त्योहारी सीजन यानी दशहरा व दिवाली को इस नई योजना को लॉन्च करेंगे। इससे हजारों ननिहाल व गर्भवती महिलाओं को राहत मिलेगी। राज्य सरकार अपने बजट से आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले ननिहालों के लिए एक्स्ट्रा डाइट का प्रबंध करेगी। इसके अलावा भी आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलने वाले राशन की गुणवत्ता को लेकर भी सरकार काम करेगी। हिमाचल प्रदेश की आबोहवा और शहरी विकास को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा दांव खेला है। केंद्र की प्रतिष्ठित प्रगति 50 शहरों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें हिमाचल से नगर निगम शिमला और नगर निगम धर्मशाला ही अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। अब इन दोनों शहरों के विकास कार्यों की सीधी निगरानी केंद्र स्तर पर होगी। 24 राज्यों के ये 50 शहर स्वच्छता के नियमित कार्यों से आगे बढ़कर निरंतर और उच्च प्रदर्शन मानकों को प्रदर्शित करते हुए देश के बाकी हिस्सों के लिए आदर्श शहर बनकर उभरेंगे। प्रमुख शहरों, सांस्कृतिक महत्व के शहरों, प्रमुख पर्यटन स्थलों और आर्थिक केंद्रों को शामिल करना सुनिश्चित किया है। इस पहल का उद्देश्य एक निर्धारित समय सीमा के भीतर निगरानी और समीक्षा के एक संरचित ढांचे के माध्यम से शहरी स्वच्छता, वेस्ट अपशिष्ट प्रबंधन, प्रयुक्त जल प्रबंधन, स्वच्छता और नागरिक भागीदारी में स्पष्ट सुधार लाना है। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।
1: गीत सुहाने नए पुराने, तो आइए जी आगाज करते हैं कार्यक्रम का इस प्यारे से गीत के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी हमारे साथ इस सुर की ट्रेन में जो है वो बैठे हुए हैं, और ये सुरों की ट्रेन यूं ही चलती रहेगी। आप सभी हम सफर की तरह इसमें यूं ही आनंद लेते रहिए गीतों का।

समय आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं नाचीज सचिन कपूर हूँ। कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने को होस्ट कर रहा हूँ और ये प्यारे प्यारे से नगमे आपके बीच आपकी उस ट्रेन में रख रहा हूँ। आइए इसी के साथ लेके चलते हैं एक और प्यारे से गीत की ओर।

आप सभी बने हुए हैं इस समय 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन की इसी गूंज के साथ। यूं ही बने रहिएगा और हम इसी तरह से आपके दिल को खुश करने की गीतों की ये डोर यूं ही चलती चलेगी श्रोताओं, जब तक आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं। अगीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का आनंद आप सभी ले रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम 91.2 एफएम पर सुन रहे हैं। बिल्कुल नाम है कार्यक्रम का गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए इसी तरह से आनंद लेते चलते हैं नए पुराने गीतों का और सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा एक और गीत। ये नगमे यूं ही चलते रहेंगे, ये ट्रेन यूं ही चलती रहेगी, आप सभी हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा रेडियो गुंजन की गूंज के साथ।

आप सभी बने हुए हैं इस समय आपके अपने रेडियो गुंजन के साथ, कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं अपने अपने रेडियो सेट पर। ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा, ये कार्यक्रम यूं ही महकता रहेगा आपके घर पर, आपकी गाड़ियों में, आपके खेतों में और जहां जहां भी आप सभी ने इस समय 91.2 FM ट्यून किया है, वहां वहां ये कार्यक्रम की गूंज यूं ही गूंजती रहेगी।

मैं सचिन कपूर हूं और कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने को इस समय आप सभी के वीडियो सेट पर होस्ट कर रहा हूं। ये सिलसिला ये गीतों का पिटारा ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सुनाते हैं इसी बीच एक और प्यारा सा गीत।

गीतों की माला यूं ही पिरोते रहिए, गीतों की माला यूं ही संजोते रहिए, हम आपके साथ हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला में। और धर्मशाला से बिल्कुल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला में। यूं ही बने रहिएगा आपके अपने रेडियो गुंजन के साथ और कार्यक्रम में गीतों का आनंद यूं ही लेते रहिएगा। कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश
1: जीतेगा। मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
2: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो हैं।
3: कहाँ रखेंगे टीवी?
4: अपनी वो कोने वाली मेज पे। दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
1: टीवी देखने बुलाएंगे?
4: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
1: ए छोड़ो, रुको, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
5: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
1: क्यों?
5: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
6: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर। मुझे उड़ना।

0: अरे इसे क्या हुआ?
1: अरे सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकाले
1: क्या? अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
1: एकदम।
5: सुबह उठते ही फोन देखने की आदत आपकी जिंदगी पर क्या असर डालती है? एक बात पूछूं, सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले फोन की तरफ क्यों जाता है? क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पूरे दिन के विचारों को प्रभावित कर सकती है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, उस समय मन को अच्छे विचार देने चाहिए। लेकिन अगर आँख खुलते ही तुम फोन में लग जाते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत मैसेज, नोटिफिकेशन और रील्स में चला जाता है। फिर धीरे धीरे मन को हर थोड़ी देर में फोन देखने की आदत हो जाती है। तुम कोई काम कर रहे होते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है। समय कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि फोन मत चलाओ। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को याद करो और सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है। उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
6: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान करूँ कि घर में सुख शांति आ जाए।
7: जुबान।

नमस्कार श्रोतों, FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजी वेड़ी जो कि सचिन कपूर। स्वागत है जी सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। होप सो आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और

रेडी गुंजन को इंजॉय ज़रूर कर रहे होंगे। चलिए जी, थक हार कर जब इंसान अपने घर की ओर चलता है, थक हार कर जब पूरे दिन की थकावट लेकर इंसान जब अपने घर की ओर जो है वो शोतों रुख करता है, तो इंसान यही चाहता है कि उसको चैन जो है वो ज़रूर मिले घर जाकर, है ना, वो सुकून जो है वो ज़रूर मिले। हर इंसान की यही फरियाद जो है श्रोताओं वो रहती है, यही आस, यही उम्मीद, यही आस जो है वो रहती है श्रोताओं। तो बहरहाल कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला हम सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को हम एंजॉय करेंगे 8 बजे तक। श्रोताओं बहुत सी जानकारियां हम आप तक साझा करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ गीत संगीत का जो माहौल है वो बिल्कुल चला कर रखेंगे। श्रोताओं हम कोशिश करेंगे, हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े रहें। इस समय की बात करूँ श्रोताओं तो लगभग 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो तापमान बना हुआ है श्रोताओं, और नमी की बात की जाए श्रोताओं, ह्यूमिडिटी जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, तो 80% के आसपास जो है वो ह्यूमिडिटी बनी हुई है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में अब आगाज़ ज़रूर कर लेते हैं कार्यक्रम का इस प्यारे से गीत के साथ। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा आरजे सचिन कपूर के साथ, गूंज अपनेपन की और गूंज आप सभी।

शो तो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला, तो बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वालों का। तो आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को अगली जानकारी की ओर। श्रोताओं, धर्मशाला की पोक्सो फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने नाबालिग से यौन अपराध के मामले में दोषी रिश्ते से पीड़ित के नाना राकेश वर्मा को 5 साल की सजा सुनाई है। श्रोताओं, अदालत ने पोक्सो अधिनियम की धारा 14 के तहत 5 साल का कठोर कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना, और धारा 12 के तहत 2 साल का कठोर कारावास और 3,000 रुपये जुर्माना लगाया है। श्रोताओं, 16 फरवरी 2025 को दर्ज की गई थी। श्रोताओं, पीड़ित ने खुद ही पुलिस थाना में पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें अपनी माता के निधन के बाद उसके पिता की और दूसरी शादी कर पंजाब में रहने लगे थे, जबकि पीड़ित नाना के घर में जो है वो रहती थी। श्रोताओं, नानी की भी मौत हो चुकी थी श्रोताओं, जिसके चलते नाना राकेश वर्मा ने 2024 में दुष्कर्म किया श्रोताओं, जबकि 2025 में फिर से दुष्कर्म करते हुए लगातार दबाव बनाने, डराने और जान से मारकर खुद भाग जाने तक की जो है वो धमकियां दी श्रोताओं। मामले की सुनवाई धर्मशाला स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं पोक्सो फास्ट ट्रैक विशेष अदालत में हुई। श्रोताओं, अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से जो है वो श्रोताओं वाक्य में ही 25 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए हैं। श्रोताओं, जांच में पीड़ित का जो है वो परीक्षण भी करवाया गया, चिकित्सक परीक्षण भी जो है श्रोताओं वो करवाया गया था, और मामले से संबंधित जो सबूत थे वो भी जुटाए गए थे। श्रोताओं, अदालत के समक्ष प्रस्तुत सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया। धारा 12 पोक्सो के तहत लगाए गए 3,000 के जुर्माने की जो है वो अगर वो जुर्माना ना कर पाए तो दोषी को 1 महीना और सज़ा जो है वो काटनी पड़ेगी। धारा 14 के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना ना देने पर जो है वो 2 महीने की अतिरिक्त सज़ा जो है श्रोताओं वो काटनी पड़ेगी। तो मतलब अगर नाना ही इस प्रकार से कर रहे हैं श्रोताओं, तो आप सोचिए कि समाज किस ओर जा रहा है और क्या विडम्बना है। वाकई में ये समझना बहुत मुश्किल है, और किसी पर विश्वास करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है श्रोताओं आज के इस ज़माने में। वाकई में ही सभी के लिए थोड़ा सा ये चुनौती, देखिए जो चुनौती भरा तो है ये हम सभी के लिए। देखिए जो आप सोचिए ना कि जो अच्छे व्यक्ति हैं उन पर भी जो है वो एक टाइम आएगा, एक समय आएगा कि अच्छे व्यक्तियों पर भी जो है वो विश्वास नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कुछ इस प्रकार के शरारती तत्व जो है वो इस प्रकार की ओछी हरकतें करते हैं श्रोताओं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एंजॉय करवाते हैं आप सभी को ये प्यारा संगीत। आप सभी के वीडियो सेट पर बने रहेगा, जुड़े रहेगा आरजे सचिन कपूर के साथ।

शोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये वेडी गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। श्रोतो आइए इसी प्रकार से जानकारियों का सिलसिला चलता रहेगा और मामला बढ़ता रहेगा। श्रोतो जानकारी का आइए अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। विशेष न्यायालय ने चिट्टा हीरोइन और जिनसे भी चिट्टा हीरोइन जो है वो मिला है श्रोतों, ऐसे मामले में आरोपी अंकुश शर्मा को दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1,00,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है श्रोतों। जुर्माना अदा नहीं करने पर जो है वो उसे 1 साल का अतिरिक्त कारावास जो है वो भुगतना पड़ेगा श्रोतों, है ना जी। और ये अच्छा फैसला, काफ़ी बढ़िया फैसला है श्रोतों। और कोर्ट धर्मशाला के विशेष न्यायाधीश जसवंत सिंह ठाकुर की अदालत ने बुधवार को सुनाया है ये फैसला। मामला पुलिस थाना डमटाल में दर्ज प्राथमिक संख्या 106/2019 2019 से जो है वो संबंधित है श्रोतों। पुलिस ने 4 सितंबर 2019 को जो है वो NDPS अधिनियम की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया था श्रोतों। मामले में पुलिस ने अंकुश शर्मा से 5.50 ग्राम हीरोइन बरामद करने का दावा किया था। प्राथमिकी के अनुसार बात की जाए तो सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू की थी श्रोतों। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से जो है वो जिला न्यायवादी संजीव राणा की ओर से कुल 18 गवाहों को अदालत में पेश किया गया श्रोतों। साथ ही नायब कोर्ट हेरी सिंह ने गवाह के बयान दिलाने व सच्चाई सामने लाने में अहम भूमिका निभाई श्रोतों। डमटाल थाना क्षेत्र में 4 सितंबर 2019 को दर्ज हुई थी और इसमें NDPS अधिनियम की धारा 21 लगाई गई थी श्रोतों। अदालत ने जो है वो सुनवाई पूरी होने के बाद जो है वो अहम फैसला सुनाते हुए अंकुश शर्मा को दोषी ठहराया और 5 साल के कठोर कारावास और 1,00,000 रुपया जुर्माना की सजा सुनाई श्रोतों। जानकारियों का सिलसिला श्रोतों यूँ ही चलता रहेगा क्योंकि आप बने हुए समय आरजे सचिन कपूर के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, हमारे साथ बिल्कुल लाइव अपने रेडियो सेट पर रेडियो गुंजन धर्मशाला में। तो आइए जी कार्यक्रम को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आप सभी श्रोताओं को जो है वो लेके चलते हैं कार्यक्रम में इस प्यारे से गीत की ओर।

शुद्ध एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुनने वालों को। आइए जी, थोड़ा सा सतर्क हो जाइए जी, अगर आप अपने घर में हैं या घर में हैं तो बहुत ही अच्छी बात है दिन के समय या रात के समय, और अगर आप घर पर नहीं हैं तो फिर तीसरी आँख ज़रूर लगाइए, इनकी सीसीटीवी कैमरा जो है वो ज़रूर लगाइए, क्योंकि उससे भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती है, श्रोताओं सामने आ जाती है। लेकिन फिलहाल तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा श्रोताओं कि जी बिल्कुल, योल बंदरोडू रोड पर जो है वो बुधवार सुबह करीब 8:50 पर यानी कि 9 बजे के आसपास जो है वो एक अज्ञात व्यक्ति एक घर के मुख्य गेट के अंदर जो है वो घुस गया श्रोताओं। घर में कोई सदस्य मौजूद नहीं था और कमरों में ताले जो हैं वो लगे थे श्रोताओं। दोपहर को घर का मालिक जब वापस आया तो उसने मोबाइल पर सीसीटीवी फुटेज देखी श्रोताओं, तो घटना का पता चला। फुटेज में व्यक्ति घर का जायज़ा लेने के बाद जो है वो बरांडे में रखी एक हैट यानी कि टोपी पहनकर जो है वो जाता दिखाई दिया। हालांकि घर से कोई सामान चोरी नहीं हुआ श्रोताओं। लहसर पंचायत प्रधान सुखदेव चंद व उप प्रधान सुखविंदर ने लोगों से किराएदारों व बाहर से आकर रहने वाले की जानकारी पंचायत व पुलिस को देने की अपील की है। उन्होंने पुलिस से क्षेत्र में थोड़ा बहुत जायज़ा लेने की जो है वो भी मांग की है श्रोताओं, और जितने भी संदिग्ध लोग अगर दिखते हैं तो उनसे थोड़ा पूछताछ करने का आग्रह भी जो है वो किया है श्रोताओं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ, लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी, जो कि सचिन कपूर। बहुत सी जानकारियां जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे श्रोताओं तक जो है वो ज़रूर पहुंचे श्रोताओं। हाँ, ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। नगरोटा में महिला ने की श्रोताओं आत्महत्या, युवक पर परेशान करने का आरोप लगाया है। ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं श्रोतों, गंभीर जानकारी है ये जो हम आप तक पहुंचाने लगे हैं अब श्रोतों। नगरोटा बगवा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सियूंट गांव में एक सियूंट वैसे आम बोली में बोलूं

को जहरीले पदार्थ निगल लिया शतों, जिसके उपचार के दौरान टांडा अस्पताल में मौत हो गई शतों। मृतक के पति ने नगरोटा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें आत्महत्या का आरोप लगा है शतों। गांव के ही युवक पर जो है वो लगाया गया है। बताना चाहता हूँ, महिला के पति का कहना है कि युवक पिछले लंबे समय से उसकी पत्नी को तंग करता था तथा आए दिन परेशान करता था, जिसके चलते मृतक ने मजबूरन ये कदम उठाया। बुधवार को सूचना मिलते ही शतों नगरोटा पुलिस ने जो है वो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और शिकायत के आधार पर घर से आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। शतों पुलिस के मुताबिक भारतीय न्याय संहिता की धारा 108, 331, 4A, 352 के अंतर्गत जांच जारी है शतों, और मृतक अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी भी छोड़ गई है शतों। तो आत्महत्या ये जीवन लीला समाप्त करना जो है वो सल्यूशन नहीं होता, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं, ना जाने उस महिला या उस महिला जैसे अनेकों बहनों की, अनेकों भाइयों की जो है वो क्या उस समय दुर्दशा होती है, क्या उस समय सिचुएशन बन जाती है, क्या उस समय चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ये वाकई में समझना थोड़ा सा मुश्किल जो है वो ज़रूर है। तो चलिए कोशिश करते हैं कि बेहतर होते हैं, बेहतरीन होते हैं, और चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश हमेशा जो है वो करते रहते हैं। शो तो आइए बहरहाल एंजॉय करते हैं इस गीत को।

शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। खूब जानकारियों के साथ हम आपको रूबरू करवा रहे हैं श्रोताओं, और साथ ही साथ खास ख्याल रख रहे हैं कि हमारे श्रोता जो है वो बिल्कुल गीत संगीत के साथ भी रूबरू जो है वो होते रहें। श्रोताओं चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को अब अगली जानकारी की। और श्रोताओं स्मार्ट सिटी और कैसी अंतर्राष्ट्रीय योजना की मुख्य डेस्टिनेशन, जी बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस मैदान धर्मशाला में। पिछले 1.5 दशक यानी 15 वर्षों से मंच का कार्य अधूरा है और अधूरा ही लटका हुआ है श्रोतों। ऐसे में वर्षा में जो है वो धर्मशाला में बड़े आयोजन इवेंट के टेंट पर ही करवाए जा रहे हैं पिछले कई सालों से श्रोतों, जिसके लिए हर कार्यक्रम में लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है श्रोतों, जबकि बजट का सही इस्तेमाल करके अच्छे स्तर पर जो है वो अच्छे स्तर का मंच जो है श्रोतों वो बन सकता है। और बनाने की जहमत प्रदेश की सरकारें जो हैं, प्रशासन जो है, पुलिस विभाग उठाना सही नहीं समझ रहा है कहीं ना कहीं। ज़िला प्रशासन कांगड़ा की ओर से जो है वो हर वर्ष कांगड़ा वैली कार्निवल धर्मशाला में आयोजन जो है वो किया जाता है श्रोताओं। इससे भी जो है वो अस्थाई टेंट लिए जाते हैं, यानी कि किराए के टेंटों पर ही जो है वो मंच सजाने का काम चलाया जा रहा है पिछले कई सालों से। इसमें मैदान की नीलामी से भी बड़ी राशि जो है वो श्रोतों बटोरी जाती है और बटोर रही है, जबकि अन्य कार्यों के लिए पैसा पानी की तरह जो है वो बहता है श्रोतों, जबकि विकास के कार्य किए जाने के लिए सरकारें, प्रशासन व विभाग ज़रा भी दिलचस्पी जो है वो नहीं दिखा रहा है श्रोतों। इससे पहले पुलिस मैदान में आए भयंकर तूफान से विवासत कार्यक्रम के समय बड़ा हादसा हुआ था श्रोतों, आप सभी को याद होगा। अगर नहीं है तो एक बार फिर मैंने दिला दिया है आप सभी को याद। इसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ था श्रोतों, साथ ही बच्चों के कुछ समय के लिए खोने, एक दर्जन के करीब जो हैं वो लोग भी घायल हुए थे श्रोतों, और घायल होने के अलावा सैकड़ों जिंदगियां जो है वो सुरक्षित बच गई थी श्रोतों। लेकिन बड़े हादसे को झेल चुके धर्मशाला में एक बार फिर प्रशासन की ओर से ऐसी ही हादसों के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है श्रोतों। अंडर 16 स्कूली फुटबॉल गेम्स के आयोजन के दौरान भी बारिश शुरू होने पर सभी आयोजकों व खिलाड़ियों को भीगने के लिए मजबूर होना पड़ा श्रोतों। वहीं कई वर्षों से ज़िला प्रशासन से बजट की पुलिस विभाग ने डिमांड रखी है, लेकिन जिसे लेकर अभी तक प्रशासन की ओर से कोई कदम जो है वो आगे नहीं बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों का जिम्मा संभालने वाले धर्मशाला की ज़मीनी हालत अति दयनीय नज़र आ रही है श्रोतों। इसमें बड़े आयोजनों की तैयारियां व किराए का अस्थाई मंच बनाने को तो लाखों रुपए जो है वो खर्च किए जा रहे हैं, जबकि स्थाई मंच बनाने को बजट की कमी आड़े आ जाती है श्रोतों। मैदान में आयोजित किए जाने वाले महत्वपूर्ण आयोजनों को इस अधूरी स्टेज पर ही किया जाता है। इतना समय बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा ना होने के चलते शहरवासी इस पर सवाल उठा रहे हैं श्रोतों कहीं ना कहीं। तो चलिए जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा श्रोतों यूं ही चलता रहेगा। आप सभी इस समय बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं श्रोतों। गुड इवनिंग धर्मशाला। तो गुड इवनिंग धर्मशाला, आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। तो चलिए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ही है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी, जो कि सचिन कपूर कार्यक्रम की। गुड इवनिंग धर्मशाला, आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, और बहुत सी जानकारियों के साथ आप सभी श्रोता जो हैं अब वो रूबरू हुए हैं। साथ ही साथ अगीत संगीत का पिटारा जो है श्रोताओं वो भी बिल्कुल खुल ही रहा है। तो अब से ठीक 2 मिनट बाद यानी कि पूरे 7 बजे जो है श्रोताओं आप सुनेंगे वेड़ी गुंजन धर्मशाला में समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें और जुड़े रहेगा वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ।
1: क्यों चलती है पवन?

0: और फिर सस्त देने हैं,
1: जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
2: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि देश भर के लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विद्यार्थी दायित्वपूर्ण नागरिकता और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना साकार करने और स्वच्छ, हरित तथा स्वस्थ भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विमान यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन स्मिथ मच्छर के असाधारण साहस और सूझबूझ पर देश को अत्यधिक गर्व है। श्री नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है। सरकार ने पात्र दिव्यांगजनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करने और उनके नवीनीकरण से जुड़े दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से बनाए गए वाहनों और दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी में पंजीकृत वाहनों को छूट वाला फास्टैग जारी किया जाएगा। ये सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र UDID कार्ड या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर दी जाएगी। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 571 अंक लुढ़ककर 71,910 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 199 अंकों की गिरावट से 22,422 दर्ज हुआ। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम पोर्टल पर फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स मॉड्यूल शुरू किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारना और उन्हें आगे बढ़ाना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। नौकायन में पुरुषों की स्किफ स्पर्धा में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने और कुश्ती में नितेश सिवाच ने ग्रीको रोमन के 97 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। वहीं पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड

तीरंदाजी स्पर्धा में गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने कांस्य पदक हासिल किया। उधर स्क्वाश में महिला और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। पुरुष क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को और पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण 23 रजत और 32 कांस्य सहित कुल 65 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोतो FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ आप सभी सुन रहे हैं, कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम का नाम है। आई श्रोतों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस गीत की ओर। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ। यूं ही
1: based on the percentage of disability.

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला पर सभी ने ट्यून किया है और एक कार्यक्रम आप सभी आर जे सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं अपने अपने रेडियो सेट पर। जैसे कि श्रोतों, हम सभी ये बाखूबी जानते हैं कि शाहपुर की सियासत में मेजर का युग का अंत हुआ है। जी बिल्कुल, मेजर विजय सिंह मनकोटिया, जितनी बार इनके बारे में बात की जाए श्रोतों उतना कम है, जिनकी जितनी बार इनके बारे में जाना जाए उतना कम है श्रोतों। मेजर विजय सिंह मनकोटिया जी के निधन के साथ ही कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में चार दशक लंबे एक सशक्त शक्ति युग का जो है वो अंत हो गया है श्रोतों। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उनके चुनाव ना लड़ने के बावजूद अंतिम संस्कार में उमड़ी सैकड़ों समर्थकों की भीड़ श्रोतों, और ये सैकड़ों समर्थकों की भीड़ ये साबित करती है श्रोतों कि क्षेत्र में उनका व्यक्तिगत जो उनका रहन सहन था श्रोतों वो किस प्रकार था, किस प्रकार का था, किसी राजनीतिक दल के सिंबल का मोहताज नहीं था। उनके अचानक चले जाने से उनके समर्थकों के लिए शाहपुर की राजनीति में एक ऐसा शून्य पैदा हो गया है श्रोतों, जो आने वाले समय में क्षेत्रों के सीआईसी समीकरणों को प्रभावित करेगा। मेसर मनकोटिया जी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत उनका वह निष्ठावान वोट बैंक था, जो पार्टी से ज़्यादा सीधे तौर पर उनसे जुड़ा था श्रोतों। 1982 में निर्दलीय चुनाव जीतकर उन्होंने ये साबित कर दिया था कि वह अपने आप में एक राजनीतिक संस्था है। उन्होंने कांग्रेस या जनता दल आज़ाद और बहुजन समाज पार्टी से लेकर अंतिम समय में भाजपा तक का सफ़र तय किया श्रोतों, लेकिन उनके समर्थकों का एक बड़ा वर्ग हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। अब शाहपुर की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनका एक और वोट बैंक अब किस ओर अपना रुख करेगा। जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा श्रोतों यूं ही चलता रहेगा। आप सभी बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ वेडी गुंजन धर्मशाला के साथ, बने रहेगा और एंजॉय कीजिएगा इस गीत को।

श्रोतो FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला पर सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना RJ वेडियो जो कि सचिन कपूर। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रोतो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आप सभी श्रोताओं को रूबरू करवाते हैं। प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में बीते 31 वर्ष से सेवाएं दे रही CHT शिक्षक रोशनी देवी ने समर्पण और मेहनत से राज्य के 3 स्कूलों की तस्वीरें जो है वो बदलकर बेहतर टीचर और बेहतर एक एजुकेशन माहौल का निर्माण जो है वो करने में अहम भूमिका निभाई है। रोशनी देवी ने न केवल शिक्षण कार्य को पूरी निष्ठा से निभाया है बल्कि विद्यालयों के आधारभूत ढांचे के विकास, विद्यार्थियों के लिए बेहतर शिक्षक वातावरण के निर्माण तथा

समुदाय की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने विद्यालयों की वास्तविक आवश्यकताओं को समझते हुए समुदाय, अभिभावकों तथा विभिन्न संस्थाओं के CSR सहयोग को विद्यालय विकास से जोड़ा और समिति संसाधनों में भी उल्लेखनीय कार्य करवाए। राजकीय प्राथमिक केंद्र विद्यालय कुमारहट्टी में उन्होंने एक कमरे के स्कूल को रुचि पैक कंपनी के CSR सहयोग से विद्यालय के पीछे स्थित पहाड़ी का कटाव करवाकर विद्यालय के विकास के लिए आवश्यक स्थान तैयार करवाया। शतो इसके पश्चात दो कमरों का कार्यालय एवं बरामदे का निर्माण करवाया। साथ ही विद्यार्थियों के खेलने के लिए मैदान की सुविधा भी विकसित करवाई। जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा आशुतों यूं ही खुलता रहेगा। आप सभी इस समय बने हुए हैं वेडी गुंजन धर्मशाला के साथ और एंजॉय कर रहे हैं अपना वेडियो गुंजन धर्मशाला। आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को अब इस बिल्कुल इस प्यारे से गीत की ओर। लेकिन चलिए बिल्कुल सुनाते हैं ये गीत श्रोताओं। आप सभी के वीडियो सेट पर बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ वेडी गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला। और अब वक्त हो चुका है श्रोताओं वेड़ी गुंजन धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद वापस मुलाकात करते हैं आप सभी से। बने रहिएगा हमारे साथ।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश
1: जीतेगा। शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
2: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
3: कहाँ रखेंगे टीवी?
4: अपनी वो कोने वाली मेज पे,
5: दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
6: टीवी देखने बुलाएंगे?
5: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
7: ए छोड़ो रुक, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
8: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
7: क्यों?
8: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके। देखो देखो शुक्ला जी आ गए, देखो
7: शुक्ला जी। शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
9: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की,
10: वही असली तरक्की।
9: एक कदम स्वच्छता की ओर।

0: क्या हुआ? अरे इसे क्या हुआ?
1: सांप ने काटा, सांप ने।
0: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
2: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालेंगे।
3: अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
3: एकदम।
5: सुबह उठते ही फोन देखने की आदत आपकी जिंदगी पर क्या असर डालती है? एक बात पूछूं, सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले फोन की तरफ

0: सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है, उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
1: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ, मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान करूँ कि घर में सुख शांति आ जाए।
2: जुबान।

तो इस अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आइए श्रोताओं कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे जो है वो बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में अब आप सभी श्रोताओं को जो है वो बिल्कुल श्रोताओं लेके चलेंगे एक प्यारे से गीत की ओर। बने रहिए, जुड़े रहिए वेणी गुंजन धर्मशाला के साथ, गूंज अपने पन की।

0: शोध FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला। और आइए, अब वक्त हो चुका है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में समाचारों का, प्रादेशिक समाचारों का।
1: 148 सरकारी CBSE स्कूलों में शिक्षकों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड आज से शुरू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के रोहडू विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान करीब 183 करोड़ रुपए की लागत की 61 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। इस अवसर पर चिड़गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास परियोजनाओं से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूती मिलेगी। उन्होंने पहले दिसंबर से दूध के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने और MIS के तहत खरीदे जाने वाले सेब के खरीद मूल्य में भी वृद्धि की घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने PM श्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय CBSE रोहडू के विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के विभिन्न सवालों के जवाब दिए और उनकी जिज्ञासाओं और विचारों को सुना। संवाद के दौरान एक छात्रा द्वारा स्कूल के नए भवन की मांग रखे जाने पर मुख्यमंत्री ने नए भवन के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नए भवन के निर्माण के लिए ये राशि पर्याप्त नहीं होगी, लेकिन राज्य सरकार आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध करवाएगी। सांसद राजीव भारद्वाज ने SIR को लेकर कांग्रेस व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान भारद्वाज ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल SIR को लेकर देश भर में गलत जानकारी देकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। राजीव भारद्वाज ने कहा कि हाल ही में चुनाव आयोग की बैठक के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने संयुक्त रूप से साफ किया कि SIR से जुड़े सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं, जिससे चुनाव आयुक्तों के बीच सहमति न होने के दावों पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा SIR को लेकर फैलाए जा रहे झूठ व भ्रम न केवल संवैधानिक संस्था पर हमला है, बल्कि हिमाचल के ईमानदार मतदाता का अपमान भी है। उन्होंने इस मामले में कांग्रेस पर सियासी ड्रामा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सालों तक सोई रही और अब फर्जी वोट हटाए जाने को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज शिमला में अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल ने भेंट की। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव M. रामचंद्रुडू के नेतृत्व में अंतर मंत्रालय के इस दल ने सितंबर माह में प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बरसात के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बादल फटने की बढ़ती घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि केंद्र द्वारा आपदा राशि जारी किए जाने वाले मापदंडों में बदलाव किया जाना चाहिए। बाद में मुख्य सचिव KK पंत ने केंद्रीय दल के साथ बैठक में प्रदेश के सभी 12 जिलों में मॉनसून के दौरान प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की समीक्षा की और क्षति का आकलन किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज शिमला में न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त पैट्रिक राटा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सेब बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए हिमाचल व न्यूजीलैंड के किसानों बागवानों के लिए एक्सपोजर विजिट करवाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि न्यूजीलैंड हिमाचल में सेब की बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने के इच्छुक हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड द्वारा प्रदेश में प्रस्तावित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। इस बीच बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने न्यूजीलैंड के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल में बागवानी के विविध आयामों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।
2: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
3: इसे एनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ, और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
2: जी डॉक्टर साहब,
3: सिर्फ इसे नहीं सभी को एनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
4: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
6: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
5: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
6: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
5: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
6: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
5: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
6: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
5: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस है। इस मौके पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान शिमला के गेटी थिएटर में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने ऐतिहासिक रिज मैदान पर वृद्धजनों की वॉकाथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश सरकार की ओर से हिमकेयर योजना के तहत इलाज में आ रही परेशानियों और लंबित देनदारियों को जल्द निपटाने का आश्वासन दिया। धनीराम शांडिल ने कहा कि वृद्धजनों का समाज के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान रहता है। उन्होंने युवा पीढ़ी से वृद्धजनों के तिरस्कार और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की बजाय उनके अनुभवों का फायदा उठाने का आह्वान किया। प्रदेश के 148 सरकारी CBSE स्कूलों में शिक्षकों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड आज से शुरू। बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर निर्धारित ड्रेस कोड का उद्देश्य शिक्षकों में अनुशासन, पेशेवर पहचान, संस्थागत गरिमा को बढ़ावा देना और विद्यालयों में अधिक व्यवस्थित व पेशेवर शिक्षण। कहा कि ड्रेस कोड के साथ साथ शिक्षकों को पहचान पत्र पहनना भी अनिवार्य होगा। शिक्षकों पर भी लागू होगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सकीय आवश्यकता, दिव्यांगता और गर्भावस्था की स्थिति में संस्थान के प्रमुख की अनुमति से निर्धारित ड्रेस कोड में आवश्यक छूट या परिवर्तन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में बात करेंगे सौर ऊर्जा क्रांति के बारे में। भारत की ऊर्जा यात्रा में सौर ऊर्जा की भूमिका लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 50 लाख घरों में रूफ टॉप सोलर पैनल लग चुके हैं।
7: भारत की सोलर एनर्जी कैपेसिटी 12 साल पहले 2 गीगावाट, आज यह 160 गीगावाट से ज्यादा हो चुकी है। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों को ही सोलर पावर जनरेशन का केंद्र बनाने का मिशन शुरू किया। इस योजना के तहत अब तक 50 लाख से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर पैनल्स लग चुके हैं।
1: राज्य बिजली बोर्ड के सलाहकार अनुराग पराशर के अनुसार हिमाचल प्रदेश में इस योजना के तहत 8,568 सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं।
8: जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, हिमाचल प्रदेश में इस योजना में बहुत अच्छी प्रगति हासिल की है और लगातार लोग जो है इस प्रकार के संयंत्र लगा रहे हैं। जो आज तक का जो हमारे पास संख्या है प्रदेश में, वो 8568 ऐसे रूफटॉप प्लांट लग चुके हैं, जिससे कि बहुत खुशी की बात है। इसमें हमारा जो है वो 29,439 किलोवाट जो है वो बिजली यहीं से प्राप्त हो रही है।
1: अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उपलक्ष्य पर हमीरपुर के एनजीओ भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों को बधाई देते हुए सुनील बिट्टू ने कहा कि बुजुर्ग किसी भी समाज व परिवार का आधार होते हैं और उनके परिश्रम, त्याग, मार्गदर्शन और आशीर्वाद से ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रोहडू में करीब 183 करोड़ रुपए की लागत की 61 परियोजनाओं के किए लोकार्पण व शिलान्यास। भाजपा ने एसआईआर को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, लोगों को गुमराह करने और भ्रम फैलाने के लगाए आरोप। प्रदेश में इस मॉनसून के दौरान प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए गठित अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल ने मुख्य सचिव से की भेंट। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित। शिमला में राज्य स्तरीय समारोह में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने वॉकाथॉन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और प्रदेश के 148 सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड आज से शुरू। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं। तो श्रोतो, अब मुझे यानी सचिन कपूर को आप दीजिए इजाज़त और जाते जाते यही कहूँगा, पर्यावरण को साफ सुथरा ज़रूर रखें, श्रोतो बुजुर्गों की सेवा ज़रूर करें और जब कभी भी लगे किसी की मदद आप कर सकते हैं तो वो ज़रूर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आरजे सचिन कपूर आपसे लेता है अब अलविदा। नमस्ते धर्मशाला।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
2: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
3: कहाँ रखेंगे टीवी?
4: अपनी वो कोने वाली मेज पे,
5: दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
1: टीवी देखने बुलाएंगे?
5: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
1: ए छोड़ो, रुको, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
6: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
1: क्यों?
6: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके। अब देखो शुक्ला जी आ गए।
7: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
8: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, वही असली तरक्की। एक कदम स्वच्छता की ओर।

0: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालेंगे।
2: अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
3: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: एकदम।
4: सुबह उठते ही फोन देखने की आदत आपकी जिंदगी पर क्या असर डालती है? एक बात पूछूं, सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले फोन की तरफ क्यों जाता है? क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पूरे दिन के विचारों को प्रभावित कर सकती है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, उस समय मन को अच्छे विचार देने चाहिए। लेकिन अगर आँख खुलते ही तुम फोन में लग जाते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत मैसेज नोटिफिकेशन और रील्स में चला जाता है। फिर धीरे धीरे मन को हर थोड़ी देर में फोन देखने की आदत हो जाती है। तुम कोई काम कर रहे होते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है। समय कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि फोन मत चलाओ। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को याद करो और सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है। उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
5: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान करूँ कि घर में सुख शांति आ जाए।
6: जुबान।

0: दोस्तों आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
2: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
3: कहाँ रखेंगे टीवी?
4: अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
1: टीवी देखने बुलाएंगे?
5: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
1: ए छोड़ो, रुको, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
6: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
1: क्यों?
6: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके। अब वो देखो शुक्ला जी आ गए।
7: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
8: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की,
9: वही असली तरक्की।
8: एक कदम स्वच्छता की ओर।
10: मुझे उड़ना

0: अरे इसे क्या हुआ?
1: अरे सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालेंगे।
4: अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
5: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
4: एकदम।
6: सुबह उठते ही फोन देखने की आदत आपकी जिंदगी पर क्या असर डालती है? एक बात पूछूं, सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले फोन की तरफ क्यों जाता है? क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पूरे दिन के विचारों को प्रभावित कर सकती है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, उस समय मन को अच्छे विचार देने चाहिए। लेकिन अगर आँख खुलते ही तुम फोन में लग जाते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत मैसेज नोटिफिकेशन और रील्स में चला जाता है। फिर धीरे धीरे मन को हर थोड़ी देर में फोन देखने की आदत हो जाती है। तुम कोई काम कर रहे होते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है। समय कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि फोन मत चलाओ। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को याद करो और सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है। उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
7: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान करूँ कि घर में सुख शांति आ जाए।
8: जुबान।

आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: गुड नाइट।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

91.2 MHz पर। यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
2: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो।
3: कहाँ रखेंगे टीवी?
4: अपनी वो कोने वाली मेज पे।
5: दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
1: टीवी देखने बुलाएंगे?
5: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
1: ए छोड़ो, रुको, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
6: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
1: क्यों?
6: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
7: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
8: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की,
9: वही असली तरक्की।
8: एक कदम स्वच्छता की ओर।
10: मुझे उड़ना है, मुझे पढ़ना।

0: क्या हुआ जल्दी आओ। अरे इसे क्या हुआ?
1: अरे सांप ने काटा है, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालने
4: का। अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
5: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
4: एकदम।
6: सुबह उठते ही फोन देखने की आदत आपकी जिंदगी पर क्या असर डालती है? एक बात पूछूं, सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले फोन की तरफ क्यों जाता है? क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पूरे दिन के विचारों को प्रभावित कर सकती है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, उस समय मन को अच्छे विचार देने चाहिए। लेकिन अगर आँख खुलते ही तुम फोन में लग जाते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत मैसेज, नोटिफिकेशन और रील्स में चला जाता है। फिर धीरे धीरे मन को हर थोड़ी देर में फोन देखने की आदत हो जाती है। तुम कोई काम कर रहे होते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है। समय कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि फोन मत चलाओ। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को याद करो और सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है। उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
7: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान करूँ कि घर में सुख शांति आ जाए।
8: जुबान।

गुंजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।